0: फिल्म सौदागर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जिसमें बबली जी ये फिल्म जो कुछ साल पहले बनाया गया है जिसमें और एक नया एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था ना।
1: हाँ जी, ये फिल्म सौदागर जो डायरेक्टर सुभाष घई जी ने बनाई थी।
0: सुभाष घई जी ने?
1: हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, हीरो, विधाता, कर्ज, सौदागर, कर्मा, बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने,
0: यानी कि ढेर सारी उनका जरूर उनका फिल्म बड़ा हिट फिल्म होते
1: हैं। हाँ जी, सुभाष घई जी की सब फिल्में ज्यादातर हिट हुई हैं।
0: और खास करके ये फिल्म में जब बनाई तो राजकुमार,
1: हाँ जी, राजकुमार और दिलीप कुमार जी,
0: तो दोनों काफी एज के हो गए थे।
1: हाँ जी, इन्होंने तो दादा की भूमिका निभाई इस फिल्म में।
0: दादा की भूमिका निभाई इस फिल्म में, और खास करके ये फिल्म बनाने के लिए भी बहुत, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि इस जो डायरेक्टर था बहुत परेशानी उसके ये लोग दिए।
1: हाँ जी, क्योंकि ये दोनों अपने जमाने के, अरे इतने फेमस मशहूर अदाकार, और अगर एक डेट देता तो दूसरा ना देता, तो बड़ी मुश्किल से सुभाष घई जी ने ये फिल्म कम्प्लीट की।
0: उसके बाद में फिल्म बनाना ही बंद कर दिया?
1: हाँ, बहुत सालों से उनकी कोई फिल्म आई भी नहीं है,
0: तो ये बात हो जाता। पर ये एक फिल्म बना था और खूब चला था।
1: हाँ जी,
0: जो मनीषा जो आप कह रहे हैं,
1: हाँ जी, नए लड़का लड़की इंट्रोड्यूस किए थे सुभाष घई जी ने, मनीषा कोहिराला और विवेक मुस्कान।
0: तो मनीषा जो कि एक परिवार से था जो पॉलिटिक्स में,
1: हाँ जी, इनके दादाजी शायद पॉलिटिक में थे
0: और ये आकर के फिल्मों में काम किए।
1: हाँ जी, नेपाल की हैं, नेपाल, हाँ जी, नेपाली।
0: तो दोस्तों, कुछ न कुछ छोटा मोटा संदेश जो हमारे पास होते हैं तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए जरूर रखने के लिए। पर बबली जी, ये है आज का संदेश, जो जिस दिन, जैसे कि जिस दिवस का जन्म हुआ है आज का, जो हमारे इतने ढेर सारे और गीतों जो हम सब लेकर आए हैं, जो हर बार दोस्ती फ्रेंडशिप पे जाता है, तो क्यों ना हम पहले गीत के ओर बढ़ते, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

0: दोस्तों ये सुंदर सा गीत जो हम सब चलाए और गीत चलाते चलाते बस कार्यक्रम में हमारे मास्टर जी उपस्थित हो गए हैं। तो मास्टर जी ये गीत आज जो चल रहा है सिर्फ दोस्ती के लिए, क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ दोस्ती का गीत आज रखे गए हैं? पर अभी आज का जो संदेश है, आज का जो संदेश है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, जिसमें पंडित गंगाराम जी ने ये संदेश को हम सब के लिए भी खोज करके रखे, तो क्यों ना हम सभी सुनने वालों को ये संदेश को सुनाते हैं कि उस दिन से जुड़ा हुआ क्या क्या बात हो जाते हैं, क्या हम उससे किस प्रकार से हमारा भला उसमें क्या हो सकता है। तो राजेंद्र जी पहले तो आप अपना मस्तदार इंट्रो कर कीजिए।
1: फॉर्म हिंदुस्तान रेडियो के श्रोताओं को सबको नमस्कार। और आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ कारणवश कुछ काम रहा इसकी वजह से, और सब लोग हमको हर वीरवार को सुनते थे और आगे भी सुनते रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जो कार्यक्रम है आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि किस बार को, जैसे 7 बार होते सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि, तो कौन से बार को जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा रहता है, उसके भाग्य में क्या होता है, और 7 बार होते तो 7 बार में किसी न किसी बार को तो एक व्यक्ति पैदा होता है, उसी उपलक्ष में ये कार्यक्रम जो है सब लोगों को, जिसका जो बार का जन्म रहा उसको वो बार सुने और अपने ऊपर देखे कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि नहीं। तो शुरू करते हैं।
0: तो इसमें उस यानी कि उस पे ध्यान देना है कि जो आप अपने आप में उसमें कुछ पहचान सकते हैं या नहीं, लोग इस बात को सुन के, और जरूर उस पे ध्यान देना।
1: हाँ, व्यक्ति के गुण, और हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसी के अनुसार वो व्यक्ति को सब लोग उन्हीं गुणों से जाना जाता है।
0: राजेंद्र जी यहाँ ये बात हो जाता है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। तो ये बात हो जाता है कि जहाँ ज्ञान है और ज्ञान को प्रयोग करे तो कुछ न कुछ संदेश उसमें से निकलेगा ना, ये जो आप अभी हम सब के लिए रखने वाले हैं।
1: जी, तो ये सब ज्ञान की बात है, इसमें से संदेश तो निकलना ही है। बात करते हैं सबसे पहले रविवार की। रविवार से बारों का प्रारंभ होता है। लोग सोमवार से प्रारंभ इसलिए करते हैं क्योंकि रविवार को छुट्टी होता है और सोमवार को ड्यूटी होता है, तो अधिकतर लोग ड्यूटी करते हैं या कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस को भी रविवार को बंद रखते हैं। मैंने देखा है कि वेस्टर्न कंट्री में तो 2 दिन बंद रहता है, सैटरडे संडे, और जो फ्राइडे है फ्राइडाक उसमें भी आधा दिन काम करते हैं, तो कुछ 5 दिन पूरा काम किया, 2 दिन छुट्टी हुआ।
0: राजेंद्र जी आज से कुछ 25 साल पहले होता था ना
1: जी,
0: तो हॉलैंड में जैसे हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम बनता है हॉलैंड देश से ना
1: जी,
0: तो यहाँ भी ऐसा होता था कि रविवार को दुकानें आधी बंद रखा जाता था, पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हफ्ता में 7 दिन अब खुलने लगा।
1: हाँ,
0: बहुत कम है जहाँ पर कि है कि वो बंद रखते हैं,
1: क्योंकि जो ऑफिस होते हैं वो तो बंद रहते हैं,
0: ऑफिस आदि वो तो जरूर बंद,
1: वो तो बंद रहते हैं, लेकिन जो दुकान है लोगों को उसी दिन सैटरडे संडे को टाइम लगता है दुकान में जाने का, इसलिए वो लोग उस दिन दुकान खोलते हैं, ये कारण है। और कुछ लोग जो पहले बंद रखते थे उन्होंने भी धीरे धीरे देखा कि लोगों को टाइम शॉप में आने का तो इस दिन रहता है, इस दिन, इसलिए उस दिन खोलते हैं। और किसी और दिन को मैंने देखा है कि कोई सोमवार को बंद करता है, कोई मंगल को करता है, एक दिन तो बंद जरूर करते हैं, और जो 7 दिन काम करते हैं तो उनके लिए अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन 1-2 दिन हफ्ते में रेस्ट होना जरूरी,
0: आराम करना चाहिए जी।
1: लेकिन हर वही आदमी थोड़ी रोज रहता, कोई दूसरा आदमी उस दिन रहता होगा, इसलिए आराम वो करता है, दुकान आराम नहीं करती, व्यक्ति आराम करता है,
0: व्यक्ति आराम करता
1: जी। तो बात करते हैं रविवार के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। रविवार को जन्म लेने वाले लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, यानी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कर्म, एक होता है भाग्य। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि काम करते नहीं हो फिर भी उनको सब कुछ मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में, तो भाग्य होना भी बहुत जरूरी है।
0: भाग्य
1: भाग्य तो जैसे हमारे मामा जी पंडित जी, वो तो भाग्य के बारे में बहुत लंबा लेक्चर बता सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में यहाँ पे समझा थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि भाग्य, जो भाग्य की रेखाएं हैं वो भी कर्म से ही बनती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भाग्य उसी अनुसार, भाग्य पहले लिख जाता है लेकिन व्यक्ति का कर्मों के अनुसार भी भाग्य बदलता है। इसलिए भाग्य के, खाली भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, कर्म भी करना है। तो इनकी आयु भी अधिक रहती है और कम बोलना पसंद करते हैं ये लोग। कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, साथ ही इनकी रुचि धर्म में भी रहती है। घर परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, यानी इस जो रविवार को पैदा होते हैं लोग, वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि सब चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, घर परिवार को खुश रखने के क्षेत्र में। और उपाय क्या है, रविवार को क्या करना चाहिए? सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह सुबह जब स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और थोड़ा सा जल में अगर हरिद्रा या चंदन या हल्दी डालते हैं वैसे, और नहीं तो केसर भी डाल सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। और तिलक केसर का लगे तो बहुत अच्छा व्यक्ति को, सुबह सुबह
0: केसर का तिलक,
1: केसर का तिलक और सूर्य को हल्दी डाल के जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताते हैं कि सोमवार को जन्म लेने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जो लोग सोमवार को जन्म लेते हैं वो व्यक्ति हंसमुख और मीठा बोलने वाले होते हैं, सुख हो या दुख हमेशा सामान्य रहते हैं।
0: तो मामा जी के मेरे ख्याल से सोमवार का जन्म हुआ।
1: हाँ, मामा जी सोमवार को पैदा हुए थे। ज्ञानी कलाकार और बहादुर होते हैं, यानी बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं ये लोग। कफ संबंधी रोगों से परेशान रहते हैं, कफ, यू नो बात, पित्त कफ होता है ना
0: जी,
1: तो जो कफ
0: निकलते हैं,
1: हाँ, उस रोग से परेशान रहते हैं। बीमारियों के कारण कमजोरी बनी रहती है, इन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। हंसमुख है, मीठे बोलने वाले हैं, सुख दुख को समान रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कफ की बीमारी हर समय रहती है, और जीवन में सुख सुविधाएं तो होती है लेकिन बीमार भी रहते हैं। तो बीमार न रहे तो सुख सुविधा का आनंद नहीं उठाया जा सकता पूर्ण रूप से।
0: तो राजेंद्र जी, ऐसा बात है
1: जी
0: कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है,
1: हाँ।
0: लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है? तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर वही आज का जो विषय है दोस्ती, जिसे जितना गीत है सब दोस्ती के ऊपर चल रहा है। तो अभी यहाँ व्हाट्सएप ब्रेक आ गया कि मैं एक बैन वंस दा खबर, तो ये हम लोगों ने गलत कह दी
1: क्या
0: कि
2: मामा जी
0: ने कह दिया कि एक बन वंस दा खबर, ये तो हमें भी पता था ना, पर फिर भी रेडियो बनाते हैं तो कुछ रख दिया गया था। क्यों ना दोस्ती के माध्यम से एक सुंदर सा गीत और चला देते हैं।
1: दोस्ती के माध्यम से जो गीत है, ये यार सुन यार तेरी, ये यार सुन यारी तेरी, तो ये बोल है गीत के।
0: और ये फिल्म, एक फिल्म जिसमें शशि कपूर जी और अमिताभ बच्चन ने काम किया,
1: हाँ,
0: राजेंद्र जी, और
1: जी।
0: देखते हैं, सुनते हैं संदेश क्या है इस गीत का।
1: जी जरूर, जरूर।
0: क्योंकि सभी सुनने वालों ये जरूर बता दूं कि अभी तो हम सब सिर्फ रविवार और सोमवार के ओर बढ़े ना,
1: हाँ,
0: अभी
1: तो पांच
0: बाकी है,
1: तो सुनते हैं गीत, इसके बाद शुरू करेंगे।
0: और राजेंद्र जी, यहाँ भी लिख दिया गया है कि एक बैन नित अप, एक बोले कि हम बोट में उनका जन्म हुआ मामा जी का।
1: हाँ, एक बार
0: ये
1: बता
0: तो बताना चाहिए था।
1: कोई नहीं, अगर बोट में जन्म हुआ लेकिन कौन से बार को हुआ ये चीज हमें चाहे पता करे पहले।
0: हाँ, तो वो भी हो गया, चला देते ये गीत दोस्ती का।
1: दोस्ती का

0: क्या हुआ?
1: चल तू चला।
0: मैं?
1: अरे चला ना। अरे मैं हूं ना तेरे साथ।
0: अमित
1: क्लच दबा।

0: जो गाना था अरे यार सुन यारी तेरी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने बड़े ही सुंदर इसमें फिल्म बनाई और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था मंगलवार की बात, और मंगलवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है वे उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी
1: उग्र बोले तो राजेंद्र जी, उग्र बोले तो
0: उग्र स्वभाव यानी गुस्सैल होते हैं,
1: ओ खड़ूस थोड़ा,
0: हाँ थोड़ा सा। इसी कारण इनका अपने आसपास रहने वाले कई लोगों से बात विवाद होता रहता है, यानी लड़ाई झगड़ा भी
1: हो जाता
0: वालों से, हाँ हो जाता है।
1: तो ये
0: इन्हें खून और त्वचा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं।
1: ऐसा?
0: हाँ, त्वचा मतलब
1: हाइट,
0: चमड़ी और खून मतलब ब्लड, ये रोग भी हो सकते हैं इनको। और इनके जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, इनके जो जीवन है परेशानी आती और जाती है, लेकिन उनको उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान जी को सिंदूर और बना हुआ पान चढ़ाएं हनुमान जी को।
1: जी
0: कुछ कह रहे थे आप?
1: नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी तो कार्यक्रम में हम सब तो मंगलवार तक पहुंचे हैं, और मंगलवार तक पहुंचे हैं तो जैसे कि अब कितने लोग हैं ना, कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नवरात्रि से शुरू होता है ना
0: जी,
1: तो अब जैसे कि हम लोग का हिंदू कैलेंडर इस समय हो गया है 2079 नेखनत शरीफन तक। हमारे जो जैसे कि हमारे मामा जी जैसे भाई हुए ना, तो उनका जन्म मिलेनियम जो ट्वेल्थ डिवीजन हुआ था, तो यहाँ भौलान में मिलेनियम मनाया गया था, तो उसका जन्म जो आज से जो जैसे कि नेखंती जिसका जन्म हुआ 1943, तो इन 1943 में जो हमारे ईश्वरी गणित होता है ना, जो यानी कि जैसे हम कैलेंडर जो देखते हैं आजकल जो ट्वेंटी तक चल रहा है, तो वो जैसे कि 1943 नेखंती द्रियम फेर तक में जिनका जन्म हुआ है, तो वो हमारे विक्रम संवत्सर जो विक्रम
0: आदित्य था, से गिना
1: तो 2000 मिलेनियम उस समय से था। तो आज हो गया है 2079 ट्वेंटी नहीं।

0: 1970। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमारे जो गणित है, हमारे जो हिंदू गणित है विक्रम संवत्सर, तो कितने साल आगे है क्रिश्चियन कैलेंडर से।
1: हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं 2779।
0: ऐसा
1: 2700 मतलब 20 बार 100 और 79 मतलब 8 और 9 और
0: 89। तो दोस्तों हम आगे कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं और कार्यक्रम में अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी बुधवार की ओर।
1: बुधवार की ओर छलांग लगाने वाले हैं और बुधवार को हमारे मामा जी का भी जन्म हुआ है।
0: जी मामा जी का
1: जन्म। तो मामा जी कान लगा के थोड़ा सुने कि बुधवार के जन्म किस प्रकार से होने वाले, जन्म जो बुधवार को जिनका जन्म होता है वो किस प्रकार के लोग होते हैं।
0: नहीं राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ जैसे कि लग रहा है कि लोग जो बुधवार का जन्म हुआ है तो वो रेडियो बिल्कुल कान के पास लगा लिया। वो उसका जरूरत नहीं, रेडियो में एक बटन होता है ना, तो उसे राइट की ओर जब आप घुमाएंगे तो जोर अपने हो जाएगा।
1: हाँ, तो उसको जोर से नहीं बल्कि ध्यान से सुनना चाहिए।
0: ध्यान से सुनना चाहिए जरूर।
1: तो जैसे कि हमारे मामा जी का जन्म बुधवार को ही हुआ था और बोट में जन्म हुआ था, तो इसलिए मामा जी सबसे विशाल इस दुनिया में कुछ अलग ही प्रकार के आदमी हैं। उन्होंने क्या नहीं इस 32 देशों में मूर्ति दान करी, मूर्ति की स्थापना करी, और बुधवार के जन्म लेने वाले लोगों का अलग ही कुछ महत्व होता है। तो बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में ध्यान लगाने वाले होते हैं, ये बुद्धिमान और मीठा बोलने वाले होते हैं, माता पिता से विशेष प्रेम रखते हैं, इन्हें शरीर की अपेक्षा दिमाग से संबंधित कामों में अधिक लाभ मिलता है। यानी दिमाग से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, शरीर से काम करेंगे तो कम मिलेगा। दो प्रकार से काम किया जाता है, कुछ लोग तो देखो कुछ लोग तो मजदूरी दिन भर करते हैं तो उनको मिलता है 100 यूरो, और कुछ दिमाग से काम करते हैं तो उनको मिलता है 300 यूरो।
0: तो दिमाग और जो दो दो हाथ दो दो पांव से जो मजदूर होता है उसमें अंतर हो जाता है,
1: उसमें अंतर हो जाता है। इसलिए दिमाग से काम करना बुधवार के दिन जन्म लिए वाले ज्यादा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी,
1: इन्हें मूर्ख बनाना भी आसान काम नहीं, कोई इनको मूर्ख
0: नहीं बना सकता।
1: नहीं नहीं, लेकिन अगर इनका उपाय क्या है, क्या और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, गणेश जी को 11 दुर्बा की गांठ हर बुधवार को इनको चढ़ा देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए
0: गणेश जी का।
1: गणेश जी को
0: तो बुधवार को और जन्म लेने वाले को गणेश जी का और बहुत विशेष दिवस होते हैं। राजेंद्र जी, बात हो जाता है कि सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बाबा महादेव जी जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उन्हें भी नमस्कार करते हूँ कि जो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं बृहस्पतिवार की ओर। बृहस्पतिवार जो जिसे हम दोंदरदाख से जानते हैं राजेंद्र जी,
1: जी
0: तो दोंदरदाख के जन्म लेने वाले को और क्या क्या और किस प्रकार से संदेश है, ये तो बस हमारे मास्टर जी राजेंद्र जी ही आपको सुना सकेंगे। दोस्तों
1: जो दोंदरदाख को जन्म लिए है उन लोगों के बारे में, जिन लोगों का जन्म दोंदरदाख को हुआ है यानी गुरुवार को हुआ है, गुरुवार मतलब बिफे, वो बुद्धिमान और साहसी होते हैं। ये लोग किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं। इन लोगों के मित्र अच्छी संगत वाले होते हैं, मित्रों की ओर से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इन लोगों को भाग्य का साथ भी मिलता है। और इनका उपाय क्या है, गुरुवार को चने की दाल बेसन के लड्डू का भोग शिवजी को लगाना चाहिए, ये इन लोगों के लिए उपाय भी है।
0: इसका सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि जो अगर संदेश में ये है कि चने का दाल ना,
1: हाँ, चने
0: चने बोलते हैं कौन सी गुगरी ना, यहाँ हम लोग बोलते हैं गुगरी
2: नहीं, चना दूसरा है और चने की दाल दूसरी है, चने से ही चने की दाल बनती है।
0: अच्छा,
1: जो गुगरी होती है उसका छिलका उतार दो और उसका दो टुकड़ा कर दो तो चने की दाल हो जाती है पीली।
0: ऐसा बात है,
1: ऐसा बात,
0: ये तो मुझे पता ही नहीं था।
1: हाँ,
0: तो चलो आगे एक छोटा सा संदेश,
1: छोटा सा एक नगमा फिर संदेश
0: चला देते हैं, पर दोस्ती के बारे में होना चाहिए राजेंद्र।
1: जरूर वही होगा।

0: किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। जब किसी की मुस्कुराहट होती है तो निसार तो हो ही जाता है, तो इस प्रकार से मुस्कुराहट होनी चाहिए कि निसार हो जाए। हम बात कर रहे थे अपने कार्यक्रम की कि किस बार को जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, तो बात पहुंच गई है शुक्रवार की। शुक्रवार को जन्म लेने वाले लोग, यानी जिस जो व्यक्ति शुक्रवार को जन्म लेता है, वो हंसमुख और बुद्धिमान होते हैं, अपनी बातचीत से दूसरे को प्रभावित करते हैं, सहनशीलता के कारण कठिन समय का सामना भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं। कला के क्षेत्र में ये लोग खास मुकाम हासिल करते हैं, और मेरा भी जन्म शुक्रवार को ही हुआ है। उपाय है कि हर शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। तो शुक्रवार के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा ही है, व्यक्ति भी देखा है और समझा भी है कि किस प्रकार के होते हैं। बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म शनिवार को हुआ है, वो एक कृषि, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी यानी जो नए नए,
1: टेक्निकल
0: हाँ
1: जी,
0: उसमें अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इन्हें छोटी आयु में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि सबको ही हो, किसी को करना पड़ सकता है सामना छोटी आयु में परेशानियों का। इन लोगों को मित्रता में सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी जिससे दोस्ती करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें। माता पिता भाई बहनों की ओर से सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, इनको माँ बाप का और भाई बहनों का सुख भी नहीं प्राप्त हो पाता है। उपाय है इनके लिए, हर शनिवार को शनिदेव के नाम पर तेल का दान करें तो इन प्रकार की मुसीबतों से वो बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये बात हमारी 7 दिनों की हुई, किस बार को कैसे लोग रहे, सबने सुना होगा। अब जो व्यक्ति जिस बार को जन्म लिया, वो व्यक्ति मनन करे कि वो कैसा है, इसके अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है और है तो तार करें यहाँ पे रेडियो में और बताएं कि कैसे हैं। अब हमारी जो सुई घड़ी की है और हमारा जो गीत है सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो है गाना, वो बहुत ही समय बताता है कि हमारा समय जो है केवल 10 मिनट रह गया है, गाना बताता है। तो घड़ी नहीं चाहिए देखे, सीधा गाना सुने और समय पता लगा सके।
1: जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम जो सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी भी सुन रहे हैं, तो और हमारे दूसरे स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ दूसरा कोलेखा भी तैयार हो चुके हैं और हाथ में कॉफी लेकर के और देख रहे हैं हमारे और इशारा कर रहे हैं। और जो ये बात हो जाता है कि हम वो गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अपना आखिरी गीत की ओर छलांग लगा देंगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम में जो आज हम सब रखे गए और ये सुंदर सुंदर संदेश जिसमें हमारे भाई राजेंद्र जी और जा करके, क्योंकि राजेंद्र जी अभी यहाँ भी संदेश आया है कि शनिवार के दिन जो बाबा महादेव और का जन्म भी हुआ है, तो उन्होंने अपने ओर से भी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लगा दिए हैं कि हमारा जन्म भी हुआ है और जा करके शनिवार के दिन, तो उनके ओर से भी हम सब को अच्छा लगता है कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम गीत की ओर बढ़ेंगे, किस सूरीनाम हमारा प्यारा देश।
0: जरूर।

0: सूरीनाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। सूरीनाम जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सूरीनाम के हैं और सबका प्यारा देश सूरीनाम है और मैं भी चाह रहा हूँ कि सूरीनाम में एक बार जरूर जाऊँ। संजय जी कहते हैं कि सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो कितना प्यारा देश है ये देखना चाहिए ना।
1: राजेंद्र जी जरूर लिफोर्नो आपको जाना है, क्वाटा जाना है, सरमक्का जाना है, निकेरी जाना है, ये सब जगह तो जरूर जाना ही जाना है आपको।
0: हाँ।
1: और कब ये कब होगा ये नहीं पता है, पर
0: होगा जरूर,
1: जरूर होगा, जरूर होगा। और अगले गीत के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी, तो हाँ। गीत का बोल जो आ जाता है आप ही उसका इंट्रो डिशेयर कीजिए।
0: इंट्रो डिशेयर ये है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, मोहम्मद रफी जी ने और लता मंगेशकर जी ने, काली टोपी लाल रुमाल 1959 यानी 1959 में ये गाना और ये फिल्म भी बनी थी, तो चला देते हैं।

0: लागी छूटे ना अब तो सनम, लेकिन बबली जी अब आप इजाजत लेने वाले हैं।
1: हाँ जी, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: बबली जी ने कहा कि वक्त से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ और विद्या यानी शिक्षा देने से वाला से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ, तो इस वक्त और गुरु दोनों ही बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हर समय चाहे संजो के रखना चाहिए।

हूँ फिर भी दिल के करीब हूँ। तो जैसे मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन रेडियो भारत में भी सुनाई दे रहा है, और अगर मैं भारत में हूँ तो रेडियो तो यहाँ से वहाँ भी सुनाई देगा। तो दूर है लेकिन दिल के करीब है। दूर आजकल के ज़माने में, इस समय में इंटरनेट का जब से ज़माना आया है, फ़ोन का ज़माना आया, तो कोई दूर कोई कहीं नहीं है। दूर है लेकिन दिल के करीब है। कहीं से बैठते भी व्यक्ति कहीं बातचीत कर सकता है, वीडियो से देख सकता है। तो इसीलिए सब दूर है लेकिन दिल के करीब ही रहेंगे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम जो कार्यक्रम चलाते हैं आगे भी चलाते रहेंगे और सब लोग सुनते रहेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए और बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई ये राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। ये जरूर कहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो बस यही है संदेश। आशा ये रखता हूं कि कुछ ना कुछ संदेश आपको प्राप्त हुआ होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को निकटीन 55 तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत एंड सेस्टक का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मौफी का नाम है महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों toen was ik nog niet eens geboren ik weet het niet ik heb deze film ook niet gezien maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना तो हम जरूर चलाएंगे आओ मिलकर सुना जाए ये कालम नहीं है दोस्तों ये कुछ और है।

नूर जहां सुरैया सहूर राजा अनवरी मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इस गीत आओ सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है। और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

बचपन के ये दिन आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत के जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, उरन खटोला मूवी का नाम है।

0: और वो रहेगा।
1: और आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है। हमारे जनता और हम चलते हैं, मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। तक में एक सुपर हिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं दोस्तों।

लता जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मौफी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फोन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

और दिल लगा कर हम ये समझे मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तले और दोस्तों दोस्तों दोस्तों तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। परमा श्री मोहम्मद रफीका निगत द्रिय सष्टकाये जो है।

बोलना, झूठ भी मत बोलना, झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

लगी तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मध्य मुकेश कहां गया हुआ जो है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल्ड करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

0: और धीरे रे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर रे। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। 1962 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।
1: कह दो जी

दोस्तों, आप अपने मूड यानि खुशी के रचयिता खुद है। आपके दिन उतने ही अच्छे हैं जितना आपने उन्हें होने दिया था या होने दिया है। और सफल बनने के लिए प्रयास करना होगा और सफल बने रहने के लिए साझा करना होगा, यानी मिलकर।

भाई बहनों, किसी भी समस्या से भागने से समाधान की दूरी ही बढ़ती है और किसी समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका उसे हल करना है, उसे ओप्लोस करना चाहिए।

प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये मत भूलो कि तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक नष्ट कर सकता है। अक्सर ये हमारी आशा, आस्था और विश्वास को भी खा जाता है। मित्रों, यदि आप जानते हैं कि तनाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, खजोंथेत के लिए ठीक नहीं है, फिर आप तनाव क्यों लेते हैं, तनाव क्यों करते हैं? अनुभव पहले ही बता चुका है मित्रों।

दोस्तों, ऐसी दो चीजें हैं जिन्हें आपको भूल जाना चाहिए। आप दूसरों की जो मदद करते हैं और दूसरों ने जो आपको नुकसान पहुंचाया है, ये आपको भूल जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके अंदर अहंकार कम होगा और तनाव भी कम होगा मित्रों। और जितना संभव हो सके केवल अच्छे कर्म करें, फिर बीते हुए कर्मों के बारे में सोचने का समय नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको फिर वो समय। कृपया आप इस बारे में जरा सोचें, विचार कीजिए।

सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

आप सभी को हार्दिक से स्वागत है इस खूबसूरत दिवस में। यहाँ से उपस्थित हो गई हूँ आपके सेविका सेविका शांता, जो यहाँ से आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। आप सभी को हार्दिक से स्वागत हो और बहुत सारी बधाइयाँ पेश किया जाता है आज इस खूबसूरत दिवस में।

आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, यही आशा उम्मीद है कि आप जरूर से खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो दुखित परिवार है, बीमार है, लाचार है, उनके लिए जरूर से दुआ प्रार्थना है। तो चले यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम, और आपको लेकर चलते हैं दना खलाइस कफेन फोर पारक, दना खलाइस कफेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खरो थांदल बेफे के जरिए से हम सुनेंगे हनुमान चालीसा।

श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में अनमोल, अनमोल कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं, बिकती अगर उसमें दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं।

नाच रहे डमरू की ताल पर, नाच रहे हैं डमरू की ताल पर शिव शंभु त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी गंगाधर, गंगाधर बाबा महाकाल सर्वेशु।

0: Den Haag Leiske Veen Voorpark is zondag groothandel. Zondag groothandel in groente en fruit in Kamalik Johem. Sriman Parshuram Mohanlal or Inike Jerje Semne Sarvan Kihe Satyam Shivam Sundaram. Den Haag Leiske Veen Voorpark is bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf. In Kamalik Johe Sriman Haridat Rohit Devnarayan or Sriman Haridat Rohit Devnarayan se hum sravan karenge.
1: Hello guys, so aaj hum aaye mandir masti karne ke liye aur ye hamare friends.
2: Hello.
1: Hi.
3: Suniye, mandir mein is tarah ke vastra pehen kar ye sab karna galat hai.
1: Par kyun? Isme kya galat hai?
3: मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर बसे भगवान का ध्यान लगाकर उनकी महिमा का गुणगान करना, इसलिए मर्यादा में रहकर यहाँ की पवित्रता को बरकरार रखना।
1: तो आप ही बता दीजिए
4: कैसे उनकी महिमा गाएं,
5: कैसे उनका ध्यान धरें
6: और कैसे उनका गुणगान करें।

0: सुंदर सा भजन यहाँ से हम मिलकर और श्रवण कर ली है मेरे सुनने वालों। ना पूछो मेरी पहचान, ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता है जिसका सिंगार, मैं उस भोलेनाथ का पुजारी हूँ। देन हाँ से खमीता रासलेट श्रीमती लैन बाबू राम जी के जरिए से ये सुंदर सा भजन हमने मिलकर श्रवण की है। दनाक से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हुए हम चल के श्रवण करें।
1: अरे भाई सब किस्मत का चक्कर है, अपनी जिंदगी में सब परेशान है।
2: चलो आप सबकी परेशानियां दूर करता हूँ।
3: कैसे?
2: अरे आप सबको कहीं लेके चलता हूँ।
4: अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
2: अरे ऐसी जगह लेके चलूंगा सबकी परेशानियां दूर हो जाएगी।
4: चलो
5: चलो भाई चलो चलो चलो।

0: अरे वाह,
1: देखा ना, वैसे टेंशन ले रहा।
0: सच में
1: टेंशन से कुछ नहीं होना, बीमारी होना है बस।
2: इसलिए जिनके नाथ हो स्वयं भोलेनाथ, जिनके नाथ हो स्वयं भोलेनाथ, वो कैसे हुआ अनाथ। सुंदर सा भजन पेश किया गया है धनहाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। श्रीमती लिलियन मोतीराम, हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हैं। श्री नाम अलिफोनो मैन कंडम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर ये खूबसूरत दिवस में सुंदर सा भजन।

हमारे ही करने, हमारे ही करने हमें ही दिखलाते हैं। जब समय का चक्र घूम कर आता है,

शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस पेश कर रहा है श्री नाम अली फोन मेनकंडम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर। दिनांक मकाई श्राद्ध नंबर 6 से दिनांक मकाई श्राद्ध नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड के जरिए से सुनेंगे हम सुंदर सा गणेश भजन।

कि आवाज है ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से हमने मिलकर श्रवण की है, कितने अच्छा लगा ना। चलो खुशियाँ का जाम हो जाए, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। खुशियाँ बांट कर हर जगह, खुशियाँ बांट कर हर जगह, आज का दिन बप्पा का नाम हो जाए। दिनांक मकाई सरत नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहून, हिंदू बास स्कूल फाहून फरेनखें अलखमेन हिंदू ओंदरवेस नीदरलैंड के जरिए से सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण किए है और आगे आपको लेकर चलते हैं। दनहाखे कृतो स्त्रात नंबर 10 से संस्था, संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ।

सुंदर सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर श्रवण हमने की है सुनने वालों, और पेश किया गया है परिवार चांदगोरबिन, परिवार चांदगोरबिन के तरफ से श्रद्धा भक्ति के साथ। और परिवार चांदगोरबिन का निवासी है दनहा 10 संस्था हिंदी प्रचार जो चांद परिवार गोरबिन के निर्देश में है। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से हम सबका दिन शुभ और मंगलमय होवे। रोटरडम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के जरिए से आपिका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में यहाँ से हम श्रवण करेंगे।

शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो मौत को, वो मौत देखकर भी हंसते हैं, वो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महादेव बसते हैं। सुंदर सा भजन पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। रोटरडाम होकफ्लिट टेक्सस वेख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर, साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात ससफेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री राजकुमार महातम जी के जरिए से। फाहा रेडियो के डायरेक्सी स्टाफ पर्सोनेल और सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में

सबका मंगल होए रे, जरूर से सबका मंगल होए रे। जिस समस्या का ना कोई उपाय, जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय। रेडियो की डायरेक्सी स्टाफ पर्सनल और सभी सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में यह सुंदर सा भजन हम सभी का मंगल होवे, सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम देने सुनने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हो तो जरूर से आप तालुकात कीजिएगा।

सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमयस्तुते। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गणेश। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ। स्वीकार कीजिए शिविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस शुभ की कार्यक्रम में। सभी को बहुत सारे प्यार मिले। दुखित परिवार जो है बीमारे लाचार है उन सभी को सहन शक्ति मिले। ये दिन आपका भी मंगलमय होवे शुभमय होवे। यहाँ से स्पॉन्सर कार्यक्रम शुरुआत को करने जा रही हूँ और आपको हम तुरंत यहाँ से लेकर सूरीनाम को लेकर जाते हैं। सूरीनाम अली फॉर नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी इस खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए हनुमान चालीसा।

जय जय राम, जय जय राम। स्वीकार कीजिए आज के सुबह की भी जय जय श्री राम। रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, हर सुबह आपका चेहरे पर नई मुस्कुराहट लाई। खुश कुछ इस तरह आपकी, कुछ इस तरह आपकी दुनिया हो कि खुशियाँ से भर जाए। हनुमान चालीसा यहाँ पे पेश किया गया है। श्री नाम लिफोनो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्स है। श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से। आपको हम यहाँ वापस लेकर आती हूँ और आपको लेकर चलती हूँ दनाखलेस कफेन फोर पार्क से। दनाखलेस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोत हांदल बेफे और श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा से हम सुनेंगे सत्यम शिवम सुंदरम।

0: है बाबूजी।
1: जैसी ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

सत्यम शिवम सुंदरम, बदलता तो हर जीव है, बदलता तो हर जीव है, और जो ना बदले वही शिव है। पेश किया गया है दनाखलास का फिल्म फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा खरोट हांडल पेफे के जरिए से। दनाखलास का फिल्म फोर पारक से सुंदा खरोट हांडल एन खरोंते एन फ्रॉइड, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल, और श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से हम सुनेंगे।

जय जय हो गजानन जी। सुंदर सा गणेश भजन आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से और आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा हम सब पर बने रहे, हम सबको एक शुभमय एक मंगलमय दिवस भी प्रस्तुत हुए। पेश किया गया है देनाखलेस को फिन फोर पारक से सुंदर ख्रोथांदल एन खुरुंते एन फ्रॉइड। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल। आपको एक बार फिर हम लेकर चलते हैं देन हाखलाइस कफेन फोर पार्क से। इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेव और इनका मालिक है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण। और श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के तरफ से

कवि प्रदीप से हमने यहाँ पर श्रवण की है कि कोई लाख करे चतुराई बल के कर्म का लिखा जो है वो मिटेगा नहीं मेरे भाई। ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है दनाखलेस कफिन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव, बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के निर्देश में। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई नई उम्मीदों के साथ उठना, सुख सुबह जैसे होता है मांगने पर नहीं पर मेरे दोस्तों जागने पर मिलता है। धन हक से खमीता रासलित श्रीमती लेना बाबू राम जी की तरफ से

अवश्य अवश्य अवश्य, नियत अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा और काशी है। जैसे कहते कि भी ले लो दुआएं माँ बाप की, माँ के चरणों में, माँ बाप के चरणों में ही तो तीरथ ही

अति सुंदर भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है आप ही का स्पॉन्सर नहीं बल्कि भजन कार्यक्रम में जो यहाँ से आप श्रवण कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और कहते हैं कि जैसे जैसे सितारों के साथ आकाश है, सितारों जैसे सितारों के साथ आकाश आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है, सच्चे मन से पलकों को बंद करके देखो, सच्चे मन से पलकों को बंद करके तो देखो, भगवान भगवान हर पल हमारे साथ है।

जितना प्यार माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं, अन्य मैं नहीं सोचती कि कोई ऐसा प्यार अपने बच्चों के साथ कर पाएगी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुंदर देवी भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। जिस समस्या का हल समझ में ना आए तो दो मेरे दोस्त, जिस समस्या का हल समझ में ना आए तो उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन मानिए कि परिणाम जो उसका होगा वो अच्छा ही होगा।

माँ सरस्वती के श्री चरणों में अवश्य प्रणाम है कि मैया तेरी जय जयकार हो। सूर्य नारायण से यही प्रार्थना है मेरे प्यारे सुनने वालों कि उनका आशीर्वाद हम सब के जीवन में रहे, हम सब आरोग्य रहे, आत्मा बल मिले और तेज भर दे। यही प्रार्थना है कि हर कार्य में उज्जवल होवे, हर कार्य जो है उज्जवल होवे और हमें जो है उसे सफलता मिले।

अवश्य जप राधे राधे। 11 मिनट बाकी है 8 बजने में। मेरे प्यारे सुनने वालों, सुबह की कार्यक्रम आपके लिए भजन माला कार्यक्रम जो हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है उसे आज एक अच्छा मोड़ दे। मैथ हेल्फ पॉजिटिव इनर्शी।

सुंदर महादेवन के भजन श्री भोलेनाथ के भजन हमने श्रवण की है आज भक्ति प्रोग्राम में। और कहते हैं जब ठोकर खा कर भी ना गिरे तो समझ जाना कि बाबा भोलेनाथ आपका इष्ट ने आपका हाथ पकड़ रखा है। करोड़ों पर भारी है मेरे दोस्त की करोड़ों पर भारी है एक भस्मधारी, करोड़ों पर भारी है एक ही भस्मधारी भोलेनाथ जी।

पल है यही कहीं अमित कुमार जी के आवास में, और कहते हैं द बेस्ट मनीर ओम सेल्फ फर्त्रावंत वेनन इस देंगन दून वार ये बांग फोर बैन। इट इस अन हेल ग्रोते उइताखिंग आस यू दैट आन कुन द बैन तू गवोन अ गवेर्दिग पर्सोन दा कुन तू दा विल सेगे दैट यू ग्रेंसेन हैब वरलेग। Dat is de beste manier om zelfvertrouwen te winnen, is dingen doen waar je bang voor bent. Succes!

0: सचमुच डैडी डैडी अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी की बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे ज़्यादा तोड़ जाता है।
1: गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ।

0: छोड़दा मन हर उदास। अमित कुमार जी की आवाज़ में श्रवण की है ये नजर ना लागे ओ साथियों। उससे पहले बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का फिल्म पर वरिष्ठ निकाला गया था और ये जो अभी आपने सुने वो देश परदेस फिल्म देश परदेस से निकाल दिया गया है। That is for Iedereen. That is for Iedereen. This ain't best dude. Ja, this ain't best dude. Je hoeft niet perfect te zijn om waardevol te zijn. Je inzet vandaag bepaalt je leven morgen. En zoals ik eerder heb gezegd, vergelijk jezelf niet met anderen. Hun verhaal is niet jouw verhaal. Rust is niet lui. Het is opladen. Kleine stappen elke dag brengen je verder dan je denkt. Je doet het geweldig en trots op je zijn. Dat is ook iets bijzonders.
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन

0: गया है आकाश में, तो यहाँ से आपके तरफ से, मेरी तरफ से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा क्रू के तरफ से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को स्वागत है आकाश में। आप है पंडित जी, नमस्कार हो।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी। हरि ओम महादेव नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासित्राय च मुक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वालों प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत आयु मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीता राम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भी धन्यवाद दे रहा जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहां प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम से आप कितने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनने वाले कुछ विचार किया जाए, इस शरीर क्यों भगवान हमें दिया है, हमें क्या करना है जीवन में सफलता के लिए। सबसे आवश्यकता वस्तु उसका आत्मविश्वास है। जब तुम्हें ईश्वर को इस नाम में पूर्ण अवस्था और विश्वास होगा तभी तुम इस नाम के पीछे छिपे हुए परब्रह्म तक पहुंच सकोगे। जब तुम इस पे ध्यान करना, जब तुम लकड़ी के दो लकड़ियों के घिसते होगे ना तो उसे उसे अगीन उत्पन्न होती है। अकुटी भाषा में कहूं हम आप दो लकड़ी के रगड़ेंगे ना तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें अग्नि उत्पन्न होगा। जब तुम वही जब तुम दही का मंथन करते हो ना तभी उससे मक्खन निकलता है। जब तुम इस सृष्टि की छिपे हुए रहस्य और भेदों को जानने के प्रयत्न करोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि राम का मधुर नाम स्वयं ही वो तत्व है। आजकल आजकल अधिकांश लोग अपना समय अपनी शक्ति और अपने सारे प्रयत्न शारीरिक सुख की प्राप्ति में लगाते हैं। संसारिक सुख को प्राप्त करने में इतने कष्ट को उठाने के बाद अन्य उन्हें मिलता क्या है। मनुष्य इस प्रश्न का समुचित उत्तर आज तक नहीं दे सका है। हे मानव प्रातः से संध्या तक तो अपना सारा समय जीव परजन में निकाल लेते हैं और इस प्रकार तो अपने सारे जीवन को नष्ट कर रहा है, तो उस परम पिता को भूल रहा है। इस प्रकार के जीवन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हे मानव, हे आकाशवाणी के सुनने वालों, इस तत्व पर विचार कर जीवन की प्राप्ति इस दोष कोण को कारण तू अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। आखिर ये जीवन किस लिए है, ये प्रश्न, ये जीवन किस लिए है, इसका लक्ष्य क्या है। मानव जीवन ऐसा अमूल्य उपहार पाकर यदि तू इसका उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता, वास्तव में यदि तू अपने जीवन के ध्येय को ही भूल देता है यानी भुला देता है, तो ऐसा पवित्र उपहार पाने के लाभ ही क्या हुआ। जब तुम ईश्वर को निरंतर नाम स्मरण करते हो तो उसके चरण कमल तुम्हारे हृदय पर सदैव के लिए प्राप्त हो जाते हैं यानी हो जाते हैं। किंतु यदि तुम भगवान का नाम नहीं लेते तो तुम्हें अत्यंत कुटिल और चलाक बनकर अपना समय नष्ट करते हो। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय को मधुर और कोमल बनाओ, निरंतर हर नाम सुमरण से ही ये संभव है। इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम संकीर्तन के लिए किस मार्ग को अपनाया जाए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रेम पूर्ण हृदय से प्रभु को नाम जपोगे तो आपको पूर्ण पावन दिव्य स्वरूप मधुर प्रेम के दर्शन अवश्य होगा। परमात्मा हम वहां भी जानते हैं ना, परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और कण कण में रमने वाले हैं। ऐसे कोई स्थल नहीं जहां ईश्वर ना हो। अतः राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम तो कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। हरि के नाम में जो पावन है, हरि नाम में जो पावनता है, जो दिव्य है, इसके कारण का पता लगाना चाहिए। वेद अनंत है ना, उनमें पारंगत होना असंभव है। इन आनंद वेदों भगवान से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। भागवत गीता से भी उपनिषदों कहा गया है, नहीं ऐसा प्रमाण है। भागवत गीता से भी उपनिषदों का निचोड़ है। ये हमें सुलभ है इसलिए कि हम जीवन में आध्यात्मिक को अपनाए। किंतु लोग तो आज इस पवित्र ग्रंथ को, श्री भागवत गीता को, उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इस पवित्र नाम के उच्चारण हेतु और उस परम सिद्ध को प्राप्त करने के लिए गोपिया भगवान कृष्ण की नाम पर क्या कहा गया है, गोपिया भगवान कृष्ण के नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगी। उन्हें प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि लोग तुम्हारी मधुर नाम का भजन नहीं करते तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। समय कहा गया, समय भाव के कारण संभव है तुम उपनिषदों का अध्ययन न कर सको। उपनिषदों की तुलना एक सधन वंश की जा सकती है। जब तुम किसी धनों में से प्रवेश करते हो तो क्या होते हैं, करते हो तो सकता है कि तुम भ्रमित हो जाओ और अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सको। वे सत्य प्रमाण है, वे विष्णु स्वरूप हैं। इन विष्णु भगवान के सीमा नहीं बांधी जा सकती है। दूसरे शब्द में वेदों का ज्ञान अथवा जिसे समझना हर एक व्यक्ति के वश के बात नहीं है। फिर गीता को लीजिए, गीता कितनी अनुपम और ग्रंथ है। हम इसकी महत्व को जानने को प्रयास नहीं करते, ये हमें स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ है, ताकि हमें इसके बदलाए मार्ग पर चलो। तत्व को चिंता करो, भगवान की महिमा का सुमरण करो तथा उसे प्राप्त करो। हम लोग बजाय इस और ध्यान देने के केवल उसके मंत्रवर्त प्रयाण में अपना समय खो रहा है। आकाशवाणी के सुनने वाले, हरि का पवित्र नाम ही गीता का सार है। इसके उच्चारण और अत्यंत सरल, अत्यंत मधुर और अत्यंत सुलभ है। यदि तुम किसी एकांत स्थल पर बैठ करके हरि नाम का सुमरण करने लगो तो तुम्हारे हृदय का अत्यंत आनंद से भर जाएगा। यदि मधुर तुम्हें किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। नारद सूरदास मेरा सुरभाई की सारी साधना के केंद्र ही प्रभु का मधुर नाम रहा है। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, हम आपके दिखाएं कि इस युग में जो है श्री भगवान के नाम लेकर के हम भाव सागर पार कर सकते हैं। आकाशवाणी के सुनने वालों, ज्यादा न कहते हुए युवानी द्वारा अपना पौरुष विराम करने जा रहा हूं। हमेशा मैं कहता हूं ना, कौन बचा है कौन बचेगा, वो किसका माल खजाना है, दुनिया थी दुनिया रहकर पंछ उड़ जाना है, पंछी कब उड़ेगा हम आप नहीं जानते हैं। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से सुंदर सा कथा। उनको दिल से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आए हैं, रेडियो फाउन पे अपना सेवा प्रदान की है। धन्यवाद किया जाता है। एक शुभ दिन आप सभी को।

ये सुंदर सा गजल गजल पेश किया गया है मेहंदी हसन जी के आवाज में। फिल्म का नाम दो राहा। आपको प्यार भरा एक खुशियां भरा दिन हो।

वाह, मुकेश जी के आवाज में फिल्म का नाम मिलाप और ये फिल्म नेकंतीन त्विंसी फंतख में पिक्चराइज किया गया है। कलाकार इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जी।

सलम प्यासा से ये सुंदर गीत आपके लिए पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों हेमंत कुमार जी के आवाज में। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला।

वाकई में ज़िंदगी को अगर हम पहचान जाए तो उसे हम ज़रूर से इतने करीब से देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है।

की देर है। किशोरदा जी के आवास में पेश किया गया है इस बार है कि दिल अच्छा है अच्छी है सूरत। फिल्म का नाम तुम हसीन और मैं।

गीत को सुनकर धुन को सुनकर जरूर से आप झूम जाते होंगे। तुम हसीन मैं जवान नेहती सैफत के सुंदर सा पिक्चराइज किया फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी अपना कला दिखाए हैं। दिल छू जाते हैं अगर हम कहते हैं धर्मेंद्र जी।

चाबी गुम हो गए तो आप तो दिल में ही रह जाओगे। फिल्म का नाम आसपास। दाल और रोटी खाओ मेरे दोस्तों। ये समझो।

किशोर जी और लता जी सुना दी हमके कि दाल और रोटी खाओ और जरूर से प्रभु का नाम गाओ, काम करते चलो और नाम

0: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए एक रास्ता दो राही फिल्म का नाम राम बलराम।

Ever, forever, forever, Indian temptation. क्या यही प्यार है जी मेरे प्यारे सुनने वालों? हाँ, यही प्यार है जो आप रेडियो फाउन को फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए।

Gigi, lieve luisteraars, it will be kasam se forever and ever. आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे सुनिए, और क्या पता होना चाहिए मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ.

में श्रवण कर ली है आज के प्रोग्राम में। वारम क्रय हे कोर्ट्स, वारम क्रय हे कोर्ट्स, सिंपल उत्तर आपके लिए यहाँ से है।

टेम्पटेशन फॉर यू वेम डमड़ी जारे जमाने में मौसम दीवाने में है ना आपके लिए आपिका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से स्पेशल स्पेशल स्पेशल यादगार आपके लिए।

दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज़ में।

फ्रेंड जो है, दोस्ती जो है, सहेली जो है, यहाँ पर तो आप अपने आप रह सकते हो। मजाक जो है, दिल के बात जो है, तो एक दूसरे से कर सकते हो। और दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि ना कि जब दोस्ती ना है तो आपके बाद वहाँ शहर में घूमे, ना ना ना, तो वो दोस्ती नहीं। दोस्ती जो आपके बाद जो है, जो आप बात करते हैं, अपना दिल के बात करते हैं, वो वहीं तक सीमित रहे। As the sun niet wil schijnen, dan schijn je toch lekker zelf. Zo simpel is dat. En het is uiteindelijk, jij bepaalt je lot elke dag door je beslissingen.

बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा, बुरा जो करोगे तो वो भी रह जाएगा।

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

जिंदगी है तू, ये बात मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा। और ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ कि आप सा ना कोई है और ना आगे में कोई होगा। एक बार फिर जो बेन नौतियाल की आवाज़ में।

रात तक कट गए, सुबह हो गए और यहाँ पर हम भी रात के बाद सुबह आते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात फिर हो जाते हैं।

यह भी एक सुंदर सुंदर शब्द है कि जहाँ जिसका दाना रहता है जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इस बार हम सुनेंगे, देखे तो अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में। कि चलने लगी है हवाएं

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में हम यहाँ और मिलकर सुने हैं। कितनी खूबसूरत से गाए हैं कि चलने लगी है हवाएं, वाकई में हवाएं भी चल रहा है। और हमारे इंस्ट्रूमेंटल को क्या हुआ, आ गए। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल तो आ गया, सुनो वालो। दो लाइन के शब्द हैं यहाँ पर, कितनी उसमें बातें हैं जो हमको छू जाते हैं और वो भी हमको भी ज्ञान की रोशनी भी दे देते हैं। तो ऐसे दो लाइन के ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं यानी कि सेल्फ, सिक्स सेल्फ, अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है।

हम यहाँ से सुने हैगा कुमार शानू के आवाज में। हाँ, और कुमार शानू ये फरमाए थे कि चोरी चोरी दिल तेरा हम चुराएंगे। क्या बात है। जिंदगी आईने की तरह, जिंदगी आईने की तरह है, आईना यानी कि स्पीकर शीशा। जिंदगी आईने की तरह है, ये मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।

यहाँ से एक बार फिर हम और आप सुनेंगे कुमार शानू की आवाज़ में, कुमार दा की आवाज़ में। चुन से तो मालूम हो गया कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

आंटी संगीत तेजो कुमार शानू जी ने हमको सुनाए हैं कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

उसके इश्क की खनक, उसके इश्क की खनक मेरी चूड़ियों में खनकती है, उसके एहसासों की महक, उसके एहसासों की महक मेरे रूह में महकती है। चाहे कितना ही छिपा लूं, चाहे कितना ही छिपा लूं, आँखों में कहानियाँ, आँखों में कहानी झलकती है।

और यहाँ से आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में सुनने के लिए, और क्या ये फरमाएगा तो हम यहाँ साथ में मिलकर सुनेंगे, मेरे को भी खबर नहीं है।

कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की जैसे। हाँ सुनने वालों, जी सुनने वालों, दोस्तों भाई बहनों, जी लो इस लम्हों को खुश नसीबों की जैसे।

चिकलाना जाने ऊंचनी चिकलाना जाने जांच सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार प्यार भरे राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। हमारा प्रोग्राम आप लोग हर शनिवार यानी कि हर शुक्रवार को और मंगलवार को सुन सकते हैं। तो हम तुरंत चलते हैं सूरीनाम की ओर। सूरीनाम की ओर हम चलते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि बीते हुए दिनों में सूरीनाम का डीएनएम स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लिखिंग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ है। ओएम ने कागज पठाए थे तीन रोज तीन लोग को स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लिखिंग में और यानी कि बस्कुल लिख करने को, वो है समोहार जो और साथ साथ हुफ्द्रांत और नूर मोहम्मद। तो इसके बारे में कितने लोग है कि जो देना में पॉजिटिव यानी कि खरोत दिल से यानी कि स्टेम करी से कि सबके माख ओ एम को ऑन द सुख करके और एक दो तीन लोग थे जो यानी कि कहा था कि चोरन के बचाओ चोर लोग को ना चाहेंगे सजा मिले के, तो वो भी बात है। एनडीपी के लोग कोई थे जो कहा था नहीं हुफ्द्रांत को नहीं चाहिए और सेल्फ समोहार जो ब्रोंतो को भी ना, सेल्फ ब्रोंतो अपने आप को टेकन किया था कि मुझे स्टार बस्कुल में करो, हम अपना सच्चाई रेक्टर को बनाना बताना चाहते हैं। स्टार फैन बस्कुल के मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिल गया है, वो देना को सिर्फ जो स्टेमिंग मांगा है कि तीन लोग को हम ओएम ऑन सुख कर सकेला। बस इतने में भाई कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए थे कि मुझे नहीं करना है स्टेम की हाँ या ना। इसमें सबसे बड़ा लोग जो है, सबसे बड़ा आदमी जो देना के फोर्स इतर है और वो है अधीन, भाग गया था भैया और अपना हथौड़ी दे दिया था, ऑफर दे दिया था दूसर का वार नहीं मन फोर्स इतर का। तो इसके बारे में एनपीएस का और डिफेंसी मिनिस्टर रोनाल्ड आसन कहा है कि देना फोर्स इतर अश्विन अधीन के बोले रसेन फरकेर थीफ का हंडल दौड़त ऑन थाउजेंड फॉर स्टेमिंग द साल तल ओपन बाय एंड स्टार फॉर बस्कुल स्टेलिंग फॉर द थ्री मेंशन। तो ये बात आसन ने कहा है और डिफेंसी मिनिस्टर कि तू सबसे बड़कुआ बाटे देना फोर्स इतर बाटे और तू कुर्सी छोड़ के चल गए ले बाटे कि हमार ऊपर कोई उंगली ना रखाई कि हम बुल्ली बाटी कि चोर के पकड़ या चोर के छोड़। तो चोर के चाहे पकड़े के भैया लोन मौसी लोन कि चोर लोग के चाहेगा बचावे के, तो अधीन छोड़ के कुर्सी चल गए रहा और कितना लोग उसमें रहा जो चोर के बचाई से मखरूत देश देना के लोग जो था वो कहना इस सब के स्टाफ फन बस्कुल लिखेंगे चाहेगा ऑन द सुख करे के हम लोग थोड़ा बाटे यहाँ पे रेख्तर बपाल करेगा कि के एमा बदमाशी करी से के ना। तो आसन बोले हैगा एनडीपी बोले हरदम बोले हम मांगेला फर्निविंग के हम मांगेला करप्शी बस्ट्राइड करे के एंटी सेट उप मबारे मिनिस्टर सुरीनाम वो ऑन अ फंकल के फन रेक्टर आलो रेमते के चाहे अनबीट करे के और बोलेगा
een rechter bepaalt, kijk, is hem vrijgesproken, hij kan aan. Je gaat voor de vernieuwing. En dan kan je als een bolle he, obole hega to corruptie mangen bestrijden kere, obole hega en to mangen hega en wie onschuldig wordt dan vrijgesteld, zij als een programma mee, adien gaf in zijn overweging aan de beoordeling voor in staat van beschuldigingstelling gebaseerd moet zijn op een voldoende onderzoek, obole en een zorgvuldige afgewogen oordeel, bolle tapukarer, bolle zorgvuldig, bolle je naar haar, to ik er waar mee Assen bolle he, bolle op basis van de beschikbare materialen kon hij niet te overtuigen konden bij voldoende was, voldoende aan de maatstaf die de wet voorschreef van de politieke bestuurlijke afwijking. Assen vindt het vooral teleurstellend Kisomo Harjo, die in zijn ogen zoveel belovend is geweest als parlementariër, nu in zo'n situatie is komen te verkeren en aankijkt tegen een mogelijke inverzekeringstelling. Jo Hardam Somo Harjo, Paul Somo Harjo, Apreke Klingboy Bolatra, Barka Batra, Akhut Ajaike, en Uphasgehe. To Yesabamat, he dosto, Jo Oudwen minister, en Asane. बताइए है तो हमारे यारो हम चलते भैया तीन डाकू के ओर भैया इसे

skoutu oisi se awat rahan je dekhi situasiya ta skoutu ka kari se bas urukal ba ye londwan je dekhi se o tu wa bhagal o to le ke bhai dekhe sipahi aave bhagal hai bhaiya ai kwata ke sipahi oke daurai se bhaiya aur jai oke claim rahe kari se o tu wa ke o tu wa ke jai ke claim rahe kari se ga aur aage si churwan baisigiriya ke claim rahe kar le raha और वो का बोले कटली से के भरूफ करत रहा और बोले तू ने फरदाख्त पुलिसी के देखी से इसे भगल हो तो लेके और सिपाही जाए के अब उल्टा ओ तो हुआ के क्लेम करी से शार्लस बिरख में भैया शार्लस बिरख में जाए को के क्लेम करी से और बोले ऐतलक तर होकता फान फिंदर ऑन द क्वार्टर वे क्लेम खरीदन ओ मां गाड़ी में पाई से भैया कापशोंस तू जाने मुड़िया बजोन से पहले रे करिया करिया स्वार्थ खसिक्स मास्कर तीन को कटली स्पाई से द आन खतरों खुदरन एन फुर्तोइगन सब पाई से दोस्तों और तीनों चोरन के तीनों लुटेरा के सिपाही गिरफ्तार कर लीसेगा और बोलीसेगा जोन ई बाई करवा रहा जेके सब रूफ कलर ओके चाहे सिपाही में मेल्ड करेगे On openbare minister verzekering gesteld onderzoek duurt voort. Bhaiya, dekho kya hoe hai. Baisigiri chalawe hai. Aur jai ke dekh roofer to ke baisigiriyo wal ke na chode bahut roof hove bhaiya sarnam desh mein. Abhi aur baat aap log ke roof ke bare mein hum batayenge dosto roof bahut jyada desh mein hue hai. Lekin aap log ko hum aur yahan hamara bhaiya Hanish Manorath bole hain वो रैग गोते क्यों अब देखो ये तो ये अंदर तक यार के सिपाही भाई ई और एकर भाई गए लहा तेल भरे यानी कि को दुकान के आगे रहा सनिचर के बात है न्यूयॉर्क का फोंदो वेक में और बोले तेर होकते फा अधित नोख्त वेक इन रिसोर्ट लतूर और वहां पे बताई गई है वहां पे बताए सब दो भाई भाई एक उसी पाही रहा और ओकर ओकर भाई भी रहा सुपरमार्केट के आगे पर गाड़ी पर केल कर ले रहा और एगो दूसर ओतो आई ले बस इस सब के पीछे के बम्पर पे मार दे इसे तस अब ये सिपाही रहा जेकर गाड़ी मारी से पुलिसी अमतना रहा तो ये नर तक यार ते जे गईल है ओकर ऑटो पपीरा मांगे हैं बस लगल इसे लड़े को तो आसे लोस और भगल है छोड़ के तो हुआ तस को तो लोस को दागी से भैया कि रुक जा ना भाग बस यू आई ले तुरंत बस को तो के पिस्तौल वे छीन ले से दोस्तों लड़ाई फड़ाई में को तो के पिस्तौल वे छीन ले से और छीन के भगल है तो इस अब को तो ओके दौराई से इसको तो इंदर तक यार वाला और भैया जे दौराई से तो ओही के सिपाहिया के पिस्तौल वा जोन छीने रहा बस ओही म से चलते ओ तो में लगल सिपाहिया के दागे लगल दागे भैया यहां बताओ द पुलिस मान से तो अख्तर फॉल्किंग मार वेर दार बे में से एक दिस वाफन बस कोतन और लगल एकर पेट में भाई एकर रेखतर बीन में लगल है राखत एरस्त खवन सेन ब्रूर ब्लीफ सेन ब्रूर ब्लीफ ऑन खदेत ओके ना लगल है और एक के सबन ना है स्कित इन रेडन फरदख्तन हीरा वेख में ही सब घुस गए हैगा फरदख्तों जो दागे रहा सिपाही सखवा अंदर सुख करे दोस्तों तो बताओ सिपाही यदि स्वामी फेल रखना है तो भला हमारा जनता कैसे वहां पर फेल रहेगा अब देखो आप लोग जानो हैं एनडीपी के शन फांदर सान भैया हां कैबिनेट के प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स के इन एनडीपी के शन फांदर संग तो शन फांदर संग भैया बोले हैं जब कोवालिची है तो कोवालिची एनडीपी के है तो बोले जितना 51% है जो कोवालिची में छोटा छोटा से इतल आयल है बोल ओके चाहे सब एनडीपी के बात सुने की वन एनडीपी चोर के बचावे है तो बोले तू लोग के भी चाहेगा चोरवन के बचावे के वन लोग क्वालिटी में बांटे यहाँ बोले हेड कान एर बे हम नित इन दत क्वालिटी में फिर इन दत सीटल मुझे ही ओम बसलाइटन तक नहीं मन एन क्वालिटी इस फॉलोगन हम यूज़ नो द ओम क्रुशियल बसलाइटन तो स्टूडेंट मन नित फॉर क्रिमिनल मेंशन आज ओ एम नाम लेक दिर फ्राक moet iedereen namelijk tegen de corruptie zijn. Orillim.

और दोस्तों एक गीत आपके हमने सुना दिया है। तो दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अभी आप लोग को हमने बताए थे जो 200,000 200,000 अमेरिकन डॉलर रो फैला चिनवा के भैया सूरीनाम देश में, आपको हम बताए थे। तो बातचीत और आगे यहाँ पता चला है कि जो रूफ करके भगल रहा एगो टैक्सी शफेर वास ओक बत्रो के मैं से एगो टैक्सी शफेर भी ओम रहा और ओ तो ले के सब भगल है त्योता आलियोन इसब चलावत रहा और सिपाही जाए इसब के क्लेम रहे करी से भैया uit het lukte de West-Dinaar om betrokken taxichauffeur klem te rijden en aan te houden mensen. Op het eigen gegaan, jetra chiche sipahi se beslag kari se 200,000 Amerikaan dollar is op leraar bakke politie actie werd 165,000 Amerikaan dollar is op terug paige he. School to paige he. Na de uitgewerkte informatie van de diverse gespecialiseerde intel unit zouden in totaal 7 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. Saat Mardana aur Oma Ego Hamara Nari रहा भैया औरत रहा जो उमा रोफो में शामिल रहा लेकिन सब पकड़ाई गए दोस्तों एंड दैट इज अ गुड जॉब खुए वर्क फॉर द पुलिसी द मग एक ओक अंकेर च जख में से मार दे इज इट वेरे वो काम व्यू के भैया एकदम लीक कर ली गए है कोलाइस वे उठा ले के से को काम व्यू से जहां हम लोग जाएला पैसा लेवे सिरी फेस्ट मोनी और एक्सचेंज बोरेस्ट्रात में जोन बा बोरेस्ट्रात में भैया वहां पे को काम व्यू है मोनी एक्सचेंज एंड बोरेस्ट्रात फॉर नोमन वर्ड द सेशन 5 तक यार को काम व्यू होदर एर आ सोमवार के रात के जो आइल है ते देखे ओकर साक पान जो रहा सब टूर टूडाड़ी से इन खबरों कर भैया भीतर घुसल है जो अंडर सुख करी से ब्लेक दादस फिया अख्तर सैद फन वोन खबाओ तूखां हादे फर्शाफ और ओमा कोई न रहा तो से फ्रे हंदे जात रहा इंद्रिंगस फोर्सियर द इस एन दीफन एसर एन फर्फॉल्कस ट्वे दुरन वारना से द रेंट फन अ कामियो बिनन ड्रोंगन एनमाल जो भीतर गेल है बोले अन क्लोज मी वार इन फलिता एन सिराम से डॉलर्स वारन बवार्ड De politie van Münder heeft de aangifte. Er werd gewerkt aan de opsporing. De otra paisa. Sabi chalge patana hai kitraar hao ma bhai. Lekin an cambio hui best heel veel geld natuurlijk in zijn kluis. Toe abit 200,000 chinoa ke maare ra. Cha gelukkig pakraai ge hai. Lekin hiya pe. Pin kluis chori bhele cambio ke. To beste luisteraars. Hamare dosto. Suriname is... onveilig mensen wat betreft over die roof. Assen ke bare mein abhi bataye the ki adheen ke wo kya kya bola tha jo chhod ke aur apan kursi chala gaya tha jo samay pe jahan tra bas les kare ke yani ki jo hum log ke star bus ko looking ke bare mein warum hi adheen ook niet meegestemd, omdat we bolle radosie ja moeina hè, abolle hega tuke baate volledige beoordeling kreeg dat doet de rechter en de OM gaat dat doen, de rechter bepaalde het. Zo is het mensen. Ik admis soetella bed legerig man slachtoffer geworden van een bhaiya, wat hem ja 61 jaar admis bedi me raha. Is in de vroege ochtend het waar ke en sab geile bhaiya oke gewapen woning roof kari se en leiding kandaan me bhaiya leiding me bhail hai yahan batai drie gewapen man drongen de woning van de slachtoffer binnen en ghus ke jai ke okar ghar me se falita chorai se bhaiya volgens voorlopige informatie se forceer kari se de daders woning en verschaften ze zelf vervolgens toegang
घुसल है और बोले है गांजे घुसल है क्रिमिनलन त 10,000 एसआरडी 100 इन अन यूरो और 100 अमेरिकन डॉलर इस अपले के भाग्य है द पुलिस वेर ना ने इंसिडेंट इन खिसका कल और बतावे हैगा कहां पकड़ाई भैया उ तो लेके चल गए और ए और का बोले हैगा 61 यार का बेट लीखरी के मान हां भैया तो ये आदमी के इतरा सबन चोरी करके भग गए एक दरी तो भैया या खबर हुए बंदूक किए चोरी करके ले चल गए कतवेक वेख में कतवेक वेख के बाद थे सोना के गहना पैसा कौड़ी बंदूक सब ले के भग गए भैया कतवेक वेख के बातचीत है तो हमारी जनता हम चलते हैं और शुक्री की गार खवान बेस्टीक इसी दिन जाने वक्तर लोन मतलब सिक्योरिटी जोन है सैमुअल कुलदीप सिंह स्ट्रांड कुल ना कफलुद्दीन स्ट्रांड के बात है और फन रूख है स्ट्रांड तन हुक तो फन मनीला ईएनएन बताए गए हुआ छोड़ी भोकी से भैया एगो सिक्योरिटी गार्ड के बफे लिखे के आदमी के और यहाँ बताए इंसिडेंट वह द फरदख्त गकलेद इन द क्राइम क्लर खतरई तो यहाँ बताएंगे और भोक के सिक्योरिटी गार्ड के और पेल भागल है भाई तो ये बातचीत हो रहा है हमारी जनता कहीं के और नहीं हमारा सूरी नाम देश के तो दोस्तों आप लोग जाने हैं बखरोटिंग भैल है और यहाँ पे फेस के लोग जो है द फ्रीनिखिंग फन इकोनॉमी से सूरीनाम से फेस प्लास फ्राक्टेकंस बे द वेसे वार ऑफ द रेगिंग है बखरोटिंग स्टॉकोर फन 2026 ही वरीकन और एक बारे में स्वामी गिरधारी जो नहीं कैसे करता रहे से फेस के बद्राख है तकोर फन 8.1% फन ब्रिटो बिनलांस प्रोडक्ट फन बीबीबी So as the regering stel maar 7.7% Girdhari Jori se na 5.1% maar 7.7% De Raad van Minister heeft 21 mei kego nota patai se Or patai se onderwerp staat begroting 2026 goedkeur kreke Op bolle uitgaven bolle 77,4 miljard Over totale ontvangkosten van 64 bolle deske bitter aiga 64,6 miljard en ook er uitgaven is 77,4 miljard. Volgens de regering resulteerde dit een begrotingstekort van 12,8 miljard, onwel 5,1% van de BBP dat voor 2026 vaststelde op 252,2 miljard tekort. Dus toen, en ja, betaalde je. गिरधारी बोले है बोले सितंबर 2025 में नोग राम अप ongeveer 180 miljard रहा द न्यूवर रामिंग फन 255,2 miljard बकेंद भाईल है तो दोस्तों और लंबा चौड़ा पैसा के बारे में लिखा गया है लेकिन हम आप लोग के छोटे रूप में बता दिया है कि ये कैसे है और कैसे नहीं है सूर्याम में बहुत पानी बरसता दोस्तों चारों बगल डबा डब पानी अबे भरा हुआ है और वहाँ के मित्र लोग इस दिन से बोले हैं बोले हुआ पानी अबे ना रुकेगा दिन के रात के दोनों पानी बरसे हैं और फिर देर तक खराद है लेकिन बारिश का वहाँ थम नहीं रहा है दोस्तों और ये बातचीत है जो रखीरिंग वहाँ के फन रोग है इस तरह थे एकदम खराब हो गया भैया भारी भारी गढ़ा है फन रोग है इस तरह स्लांगन हो इस तरह के बारे में अब बोले एर इज नॉक निच कॉन्क्रीट ऑफ ताफल खले ook niet dat onze rechtsstaat tegen de staat wordt ingetrokken, hoewel dat een mogelijkheid is, zegt Vitali Directeur, versie Khuda Paks ke bare mein. Hamare yaro, hamare pyare pyare janda. अब हम जाएला सोमो हार्जो ई पौल सोमो हार्जो के बाद भैया पौल सोमो हार्जो कितना दिन से सूरीनाम के प्रेसिडेंट के भैया आज फिशर है पैसा पावे है तो परचा लुहुर के टॉप माने पौल सोमो हार्जो
u paisa pawe hega stat adviseur ke 60% van de salaris van de president van Republiek Suriname als ambtenaar op mijn leeftijd 83 jaar gehoege he. Hoeveel zou ik aan de pensioen verdienen? Hoogstens 20.000, maar ik krijg nu 60% van de president salaris met alle emolumenten. Wat ga ik ermee doen? Ik geef terug wat ik over heb, geef ik terug. Ik heb niets nodig. Ik heb auto's, huizen. Ik heb alles, zei ze op een harde vrijdag tijdens een persmoment. Volgens de politicus kent Suriname op dit moment twee staatsadviseurs, namelijk Somohardo en Ramon Abrahams. Van wat zijn werkzaamheden betreft stelt hij dat zijn adviezen als adviseur goed door de regering wordt gevolgd. De Rood-Witte Partij gaat zich in de komende periode sterker inzetten en op sociale. तो भैया बोले पौर सम हार्दो बोले मोई आजफीस देवे है बके हम लोग के देसवे ना मोई चले भैया तो कैसन आजफीस तू देवे है भैया सोमो हार्दो एंड अब्राहम्स हम लोग के देश के फौरज खांग ना दिखा है सोमो हार्दो भैया द मख्तू सेल्फ कान से दच हेल खुद आजफीस के अब देखो भैया एस एल एम टू स्टेल ब्रेक लैंडिंग अफ न टचडाउन नीचे छुई के और फिर चढ़ गए भैया पचासी डराई गए है डराई गए प्लेन उतरत रहा एस एल एम जमीन पे गोड़ धड़े से पहले फिर चढ़ गए है पचासी गुस्साई गए है डराई गए है पचासी इन द Gecharterd toestel van SLM raakte atwaar ke 7 juni ke lichtelijk in paniek nadat de landing op de Sandrei een laatste moment werd afgebroken en een vliegtuig opnieuw opsteeg. Toen je baat he uterat op een chargé he PY993 Amsterdamse Suriname geil ha. Op sociale media staan beelden op waarop te zien is hoe de toestel de landingsbaan raakte. En voor Volker Kort deze touchdown weer vermogen maakt opnieuw de lucht in te gaan. Na Utterpijs via Gordharadharad en luchtvaartscanner gaat het om de zogenoemde bullen of doorstaat een reguliere veiligheidsprocedure waarbij landing wordt afgebroken en later opnieuw wordt uitgevoerd. Hoewel dit in de luchtvaart niet ongebruikelijk is, zorgt het gebeuren van lichte spanning onder sommige passagiers omstanders. Op het AWH. Dat had mede te maken met het feit dat zondag ook de herdenking plaatsvond van de vliegraam van SLM. 7 juni 89 keer Oregoplein Giralla op het toestel van SLM neer tijdens de nadering van de rij. Nabij kwamen 178 mensen dood. Juist door die beladen datum leidend onverwachte manoeuvre zondagavond tot ongerust reactie op de sociale media. Verschillende personen gaven aan dat het afbreken van de landing het extra nerveus maakte mensen. Oei Rood Giral ha, hem lukke SLM 19 en 89 keer. Oei Plenua op SLM pin goor dharke en op een bantie nietje dharke pin chaharge upper janta dalaige ki juist oei Rood ee chij bhail hai. Hamare yaro, hamare pyare pyare janta. सांग भैया चिनुआ भैया देश में चमके है पानी चारों बगल बुड़ल है और बोले बेशक मैं आंसकाफ एकन मोबाइल वाटर पंप तो सो होंडे सेस्टक तो होंडे ट्वी होंडे डाइजन अमेरिकांस डॉलर बोले एक पंपू भले बिकने उकीने मांगे हैं और बोले मोबाइल वाटर पंप जो नहीं से हुआ हटाई सके हैं और गयाना से दुई को लेनी करी से भैया अब सांग मांगे अपरे कीने और बोले एक हैव द अनबस्टे दे होल्डन फॉर 3 mobiele pompen en het is nu wachten op de ik weet niet wat de prijs precies is, maar ik heb begrepen kegelmobiele pomp 160 tot 2 ton dollar mee mielen hebben ja toe je aan pe janta behoed en jaren ki boli se ki jo nou go milala upompon kaha hai bhaiya sang jo tu phin se paisa mange leke kine bole upompon miliga ki koi ke ghare dharal nahi the bawesh one for the and that he faker confronted word met an argument waarom geen bruikbaar
gebruik maakt van een soortgelijke waterpompen die rijstboeren gebruiken. Die pompen beschikken echter niet over nodige capaciteit om hevige wateroverlast te lossen, aangezien de capaciteit van de pompen van Guyana 10 maal hoger is. Om aan de behoeften van Suriname voldoen, zijn pompen nodig met een capaciteit die 2 maal groter is dan de Guyana. De bewindsman is blij met de steun van de buurland, aangezien mede hiermee het Rijmawal project. To pani ke bare mein hum log ke Suriname desh to bud gaya hai hamari janta aur ye chinwa bichara bhi na jane wo ka kare aur ka na kare hamare dosto. To aapko hum aur aage ko apna program ko sunayega kya hua aur kya nahi hai. वही का फुटबॉल तो आने वाला भैया तुलों जानो है एकदम आएंगे मुड़ी पे आएंगे फुटबॉल तो एसवीबी जो है सुरनाम से फुटबॉल बोंड जो है बोले हैगा बफेस्ट तक फरकूप वही का कार्टन ऑब्रेंस मुसीरनाम से फुटबॉल फर्स्टर्कन कार्टा बेचे भैया पॉलिटिकल डिस्कशन die ontstaan over de beschikbaarheid van de WK-kaarten op de Surinaamse voetbalgemeenschap. Op Bollehega, Surinaamse voetbalbond, Bolle kreeg de organisatie van de FIFA de mogelijkheid om een beperkt aantal kaarten voor een wereldkampioenschap af te nemen. Op het moment dat hiervoor een beslissing moest worden genomen, beschikte de bond echter niet over voldoende financiële middelen om de kaarten zelfstandig te financieren. Bye! Tussen naam te bijna, abitus heb kali rechtig hoe je televisie धरके और एक बारे में यानी कि एनपीएस के फोर्सिटर हैं और हमारा फीसे प्रेसिडेंट है एक बारे में 500 हजार डाला अनुकाब लेगा भरी एसवीसीएस के मिलाए के जो ने उसे के कई खेगा अन टेलीविजन के रखते जो हैं ओके देखे के हमारी जनता तो देखा जाए पाकितो भैया रखेरे के घुस गए हैं जब से गए लोकर कुछ सुनाना है उधर चिनुआ यानी कि ऑन द वेस मार्क स्टक कर इस रहा डेमोस्ट्रेट कर इस स्कोटू मांगे करे के मांगे करे तो यहां पे बताए एनडी पीयर स्टीफानो पाकितवी पाकितो Bierveld zit in tegenstelling tot Jane Shire Mixon en Reynold Peppy van Els niets mis met de besluit van de regering om recent 2 waterpompen Guyana te lenen. Volgens de politicus is helemaal geen sprake van schande en zou de Surinaamse justitie een pakket ook in moekhoelen bij jou op de NDP hier hoeien. Op hele NDP ke oe, bood bood baad bolletra. और आज एनडीपीओ के काम दे दीजिएगा तो चिरैया दूसरा गाना गावे भैया चिरैया पहले भजन गावत रहा अब ये भी पोकू गावे है तुलन समझ गए ले हमार बांध कहां लेकर जा है तुलन समझ गए लो तो हम काम बोले मांगिला हमारे जनता Bloedsporen in de MC polykliniek Apura in Inbraak भैया Inbraak भइल है पॉलीक्लिनिक अपूरा में जहां पे भैया पॉली ओके भी सब हमने निष्पोईती गईला चोरी करे की पारासीटामोल भैया और शुक्रवार और शनिचरवार के रात के 6 तारीख के वेगो मीजिस सेंडिंग हैगा अने सुरनाम अपूरा में और यहां बतावे भैया हुआ आईना फोड़ी से नेट फॉर मी नॉट ऑन बकेंडर दैट अन ग्लासर राम हैवन इनगेस्लागन और मेरे बान बिना त खान और बोले जे गए तंबा मालूम पर उस सबके हाथ गोड़ कुछ कट गए हैं वन ब्लूड स्पोर रहा फॉर सो फेयर बकेंट इज इट नीट नोमच वार्डक बैठ को नोमन कौन ची तो पये भैया एगो दतरा के घर में खाली दवाई स्पोईती चंगी पयो ना द ऑन देखिंग फन इन बराक स्को टू गेल है और ओ मा ब्लूड स्पोर पाई से अपरे से चोरवा जाए के हाथ गोड़ कटवाई के चल गए हैं बयान बट भीन जाएगा वही हतवा वही तोर खार फर बांध करी फर मुडलक ऑफ कोमस्ट फन दाद दिस एक ...mogelijk hebben verwond bij de forceren van toegang... ...vanwege de afwekigheid van deze persporen... ...en noodzakelijke spoonmakwerkzaamheden... ...bleef de polykliniek zaterdag even benraam... ...want ze hebben geen saafzoetra... ...kreeg het ook maar een janta... ...als je baat het toelen... ...jaan het telwa... ...hem lukken ben...
olietanker in straat van Hormuz uitgeschakeld. Want hoe heb je een bootle hebben hoe we ja, Kabul hega, Iran ke jagha hoe Hormuz me, de Amerika bole is het een achteraanval. Ik olietanker ha, jon palouke, vragen leke jatra op X schrijft het regionale commando Amerika ke, kego F-18 jor ha. Bole oké, okay, uitschakel ke ze boete doen met precies munitie de machinekamer te raken. Het is de zevende keer dat US Ken Tom uitschakel vroeg ter commando eraan toe. Ook meldde commando dat de 134 vaartuigen zijn omgeleid nadat ze wel Amerikaanse bevel hebben opgevolgd. De VS hebben als reactie op de Iraanse blokkade van straat Hormuz een eigen blokkade opgeworpen bij de Iraanse havens aan de voor de wereldhandel belangrijkste straat. Al receptologianen peilen Iran bunker op in Amerika op een bunker deze HWP. Iran is voor zijn olie-export voor grofweg 80% afhankelijk van die route. Vooralsnog is Iran daarom gedwongen olie die hij produceert op te slaan in plaats van het uitvoeren. Dat kan consequenties hebben als Iraanse olie opslaat. Op kontje heb je Iran op een bunker de raha. Sabke khatir op Amerika ook er bunker de is ki toor joon teel nikre he. Op er heen des me tu dhalle rahiye. Want op oke tu beche na paio. Aise baanchit he. Hamare zunne walo. हमारा समाचार में तो हम चलते हैं एक बॉलीवुड सॉन्ग आपको हम सूची तरी सुनाई नहीं कि ना सुनाई वांट हमारा समय भी धीरे-धीरे तो आ रहा है।

दोस्तों, और आगे को अपना समाचार को हम सुनाते हैं। भैया यहाँ पे बताए गए हैं, पॉलिसी वार्स क्यूड फॉर टू नहीं, मतलब ऑनलाइन अपलिफ्टिंग फिया फेसबुक, तो जाने फेसबुक पे भी लोग आजकल बहुत अपलिफ करते हैं। इसके बारे में आप चौकस रहना, चौकस रहना। पॉलिसी बोले है फेसबुक पे आदमी ऑनलाइन चीज उज बेचे, एक बारे में खूब मोई से तुलन छानबीन करके जाइए कि ने बहुत जबर अपलिखते रही हुए है। वेस अलर्ट पे ऑनलाइन आन कूपन में से द पॉलिसी ऑफिसर्स बेरकस ऑन फॉर सिक्स तक से सेंड बेर ऑनलाइन आन कूपन एन एक्स्ट्रा वाक साम तो ब्लाइफन वनेर फॉर कूपन फॉर आ om betalingen vragen, controleer indien mogelijk de betrouwbaarheid van de verkoper en wees terughoudend met het overmaken van geld aan onbekenden. Bhaiya, zomaar paisa na overmaken kariye, oplicht bahut jada hue hai, to sipahi yahan pe aap log ko alert kiya hai, iske bare mein aap log ko jarur, jarur, jarur, jarur, yani ki apne aap ko chaukas rehna padega। तो दोस्तों यहां पे और बताए गए हैं, और आगे प्रेसिडेंट सिमोन ऑनडरवाइस लेटल तो ग्रोई इन आनमोदर बस्ट्रेडिंग। हाँ रे बाप रे बाप, ये भी हो रहा है स्कूल के लड़कन के बारे में। सिमोन्स बोले है ओपनिंग फॉर नेशनल ऑनडरवाइस कांग्रेस इन द रॉयल बेडरूम फॉर होटल तोरारी का है बलंग फॉर इन्वेस्टियर इन ऑनडरवाइस ऑन द स्ट्रीट फॉर द होस्ट स्टार्स फॉरम ऑनडरवाइस बेसिस फॉर ड्यूसाम ऑनटूविकलिंग के बारे में है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हाँ तो यहां बतावे क्यूरी और खुद अपखलेदे बफोल्किंग फॉर्म द बासिस फॉर इकोनॉमी से ग्रोई। जब बफोल्किंग अपग्रोई ना है भैया, चलाक ना रहेगा को देश के ग्रोई ना होई, तो नेशनल अंडरवेज कांग्रेस भाई रहेगा ऑफिशियल ओप भाई 8 तारीख और 10 तारीख के, और वहां पे बताई गई है क्या को तीमक नाम एडुकेशन द वे आउट आर्मूद ना द ग्रोई फॉर अ फोर आउटगंग। तो हां एकर बारे मिनिस्टर डायरेक्ट क्यूरी बोले हैगा अंडरवेज के कि बोले है दुई गो फंडामेंटल उद्गमपुंतन हैगा, और बोले द बविस्मान बनाने के को खुद अपलाइडिंग जो लड़कन पावे आदमी पावे है, बोले तब तो देश के इकोनॉमी ग्रोई हुई। और बोले जब उ अपलाइडिंग तो के ना हैगा, तो बोले कि कैसे तू देश के अपलाइडिंग ग्रोई कर पाइए। सुरिनाम में तो एक रवाज है भैया, जब तो के को पॉलिटिकल पार्टी है देकर पीछे पीछे तू दौरे है, तब तो के चाहे कोई अपलाइडिंग है ठीक से नहीं ना, मैं पा जाइयो भैया काम करे करे। बोले एर माल मिस दोना लांती और रुकत जिंदगी भर सेस तक यारी तक वहां बैठी भैया, और चाहे वो काम कुछ कर पाई या ना कर पाई भैया। आप देखो यहां भैया क्यूबा के छौड़ी लोग के मेंशन हंडल भइल है, बुलाई से कुछ और छौड़ियन के बोले चल तू लोग के मोई मोई काम देबे, और जाए के वहां पे हो प्रोसेस्ट वे में सबन धर देवे भैया। एकर बारे में ऑफ द ट्रैक फिकिंग फन पर्सनल टी पी स्कोरस पॉलिसी बोले है को 26 के क्यूबान है, और एको 55 यारक सुरिनामर है, इस छौनी लाई से गयाना हुआ से क्यूबा से, और लाई के नख क्लिप्स में इस सब के धरी से बॉर्डील करवावे हौसल करवावे फॉर द प्रोसेस टू वी, और बेन लंत में इस सब के भी धरे रहा भैया वन आइट फॉर लूप का ऑन द सुक इस कब्लीकन दैट अ फ्रॉ ऑन द फॉल्स फॉर वेंसलन सुरिनाम सो सेन खबरा eenmaal in het land zou zij gedwongen zijn geweest om als posters 2 werkzaam te zijn in nachtclub en een bordeel in binnenland. Binnenland, maar ja, volgens de politie was daarnaast sprake van vrijheidsbeperking, intimidatie en bedreiging. Ook zou het geld dat de slachtoffer verdiende stelselmatig door anderen zijn afgenomen. Hoe ze op een ding een beetje hun paisa pauwtra, hoe paisa ze van lille wat raar. सिपाही एकर बारे में पकड़ी से भैया बोले सेड ऑन द सुक फॉर द एक्सैक्ट ऑमस्टांडिगन, वन एगो औरतिया ओमा से निकल के भग गए रहा, और जाए के अनमेल कर रहा सिपाही में तब चीज ऑन द सुक भइल है। क्रॉस पुलिस से नाम बना दुर्गदन मेंशन हंदन अरेस्ट का मिस ड्राइव इज एर ऑफ द फैमिली को अप अलर्ट ब्लेफन द फैमिली फन कोंची भैया जाए अलर्ट करे जनता।
का जाने उस सब चीज के बारे में और सिपाही के चाहिए कर बारे में काम करे अलर्ट के मतलब है गा तो लोग जाने रहिए कि ये सब चीज हुए है और यहाँ बताए गए है श्री राम के बातचीत हो रहा है हमारे जनता। तो यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए भैया तो पूरा एक घंटा हो चुका है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात फिर रेडियो के माध्यम से होगा। जोनी नंबर वन है हमारा नाम।

और अनोखो अन अन अखियों की झरोखी के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आ

और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

भी इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते ही तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

आया जगदीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आ रही साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

हमारे चार के नंबर कोई भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए नुल सुविधा दरी 62 20 77 0 70 3 62 20 77 77 रेडियो के माध्यम से कुछ काम करवाना है

सुधा मर्दौली मोहन प्रोग्राम भी सुधा है उनके तरफ से। बधाइयां और शुभकामनाएं।

और आप एक हिट स्टेशन पाहुन हिंदुस्तान रेडियो के माध्यम से जबकि हमारे कार्यक्रम नौ सौ पंद्रह

0: गाओ नाचो झूमो खुशियां मनाओ आपस में प्यार में मिलकर, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा धर्म मत भूलो, प्रचार करते चलो, समझा रहे बतला रहे आपको कौन इस देश में।
1: आमी है हमारा शान, बोलो सरनामी है बड़ा महान।
0: और कौन ये कह रहा है? दबीन बलदेव सिंह।

होलन पे रहते हो ना, मत भूलिए अपना संस्कृति, अपना भाषा, अपनी सभ्यता, यही आपकी दैती तय थे। कौन हो आप?

बलदेव सिंह जो आपको ये संदेश दे रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता मत भूलो। और क्या कहते ये भाई, नाम है सूरदेन भगवान।

0: हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है।
1: High quality songs, saregama.com से।

शेर शायरी सीखा हूँ इसे कभी कभी कहता हूँ कि शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता दोस्तों, शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता, तुम्हारे सिवा पूरा एक ख्वाब नहीं होता। ईरानी जी कभी आंखें भी देख लिया करो, नबी कभी आंखें भी देख लिया करो, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर वक्त बातों में सही जवाब नहीं होता, हमारी बेस्ट और लो इस तरह से प्रोग्राम पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कहना है।

और यूं ही आपसे ये कहता हूँ कि दो चीज़ें जो है, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हमारी और बेस्ट पाहुन की सुनने वालों,

वाह रे वाह कलाकार, उनकी जो है कैसे तारीफ करे। यूं ही हमेशा मैं कहता हूँ कलाकार की तारीफ तो चाहिए करने के लिए, तालियां वही चाहता है कलाकार, उसी से खुश रहता है। और जो है संगीत हम तो सब पसंद करते हैं। महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है ना, महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, वफा नहीं या वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है। हमारी और बेस्ट मेंशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन, हिट स्टेशन द म्यूजिक म्यूजिक स्टेशन। और यहाँ पर बयान करते हैं

अब ये खास खास नंबर आपके लिए और बहुत प्यार के साथ हमारी बेस्ट सुनने वालों पावन के जो ट्यून है इस वक्त जो है आपको और पल घड़ी जो है जिंदगी के अच्छे से बीते, जबकि संगीत हम आपके लिए कुछ प्रस्तुत करें खास कार्यक्रम यहाँ से सुनाम तक लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं तारीफ करते हैं उन लोगों को मैं हृदय से फिर धन्यवाद दे रहा। हमारे भाई छोटा भैया जो है खास करके देव प्रकाश पूरन कार्यक्रम भी सुन रहे सुनाम में माता श्री श्रीमती भी सुन दी और बलदेव खास करके जो है अपनी माँ के पास उपस्थित होकर और जो है साथ उनकी सेवा सत्कार जो करता है सुपुत्र होने के कारण ऐसा ही चाहिए ना अपनी जिंदगी में जो है और अपना जहाँ तक अवसर मिले ये कार्य कर सकते हैं अपने माता पिता के किसी काम आने के लिए। इसीलिए माँ बाप पिता जो है अपने सुपुत्र सुपुत्री को और ख़ास करके जन्म देती है जाकर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वही काम आते हैं बेटा बेटी जितने परिवार होता है। मैं इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी है माता श्री सुनाम है और वहाँ पर उपस्थित हमारे भैया देव प्रकाश पूरन जी आज उनकी बारी है माँ की सेवा करने के लिए। तो उन्हीं के नाम हमारी भैया देव के नाम आज के कार्यक्रम में जो है एक और जो यहाँ से मैं खास करके प्रस्तुत जो करने जा वाला हूँ एक संगीत यानी कि ढूंढ रहा हूँ और उनकी पसंद होता है जो दोस्तों तो अपने अपने अपनी पसंद तो हर एक कोई को होता है ना और देव के अलहदा पसंद है उनकी हमेशा जो रहते होता है और पसंद है। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुपते हैं ना कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई हम इतने ही बुरे हैं। नहीं तो देव याद नहीं तो और आप ही के नाम से ये खास नंबर जो है माता श्री के मेरे तरफ से और अपना शीश नवाए के दोनों हाथ जोड़ के पालगी करते हैं ना देव प्रकाश पूरन राजा। The heart of millions, mighty Mukesh ji।

और मुकेश जी की आवाज़ में ये नंबर को सुनिए, और हमारे भैया नाम जो है राजा देव देव प्रकाश पूरन उन्हीं के नाम से आज के कार्यक्रम में बहुत ही प्यार के साथ वो कहते हैं अपनी माँ की सेवा सत्कार करते हैं सब कोई बारी बारी जाकर, भाई बहन जितने हैं दोस्तों, माँ ये शब्द माता जो है माँ, कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, जब लिखते हैं लिखो कितना लिखो लिखना चाहते हो, ये माँ की है उनकी प्यार जो होता है ना, माँ कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, सच ये है कि माँ तो माँ है तो हम है दोस्तों, माँ तो माँ है और जगह माँ है तो हम है, माँ नहीं तो हम नहीं दोस्तों, यही है आज के कार्यक्रम में, और हमारे प्यारे भैया खास करके देव प्रकाश पूरन के नाम और ये नगमा ये गीत आप श्रवण किए, प्रोग्राम फाहुन की आप सुन रहे हो, और इस बार सुरनाम के लोग ये लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं साथ देते हैं दे रहे हैं भी हृदय से धन्यवाद।

صاحب او سروكي ديبي يعني كي د ميلودي كوين لتا منجسكر اندر کیا واجو میں یہ نمبر اپ اشربن کے आगे के कार्यक्रम में इस बार नंबर जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे तो वही कहते हैं मिकी माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में, माँ के गोर के नीचे, खास करके वहीं पे स्वर्ग है दोस्तों। अरे कोई जो है कहीं से, कहाँ से आए हो आप, कहीं से वही माँ से आए हो, और माँ के इज्जत हमेशा करते रहना जहाँ तक हो सके। और आज जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मेरे भैया जो है छोटा भाई देव प्रकाश पूरन वहाँ माँ के पास उपस्थित है नाम में और उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं। श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन है ना दोस्तों, खास करके आज के कार्यक्रम में उनकी मैं अपनी याद कर रहा हूँ कि मेरी माता श्री है, सभी भाई बहन जो जाए, खास करके वती हिसला गीता शरीता गीता के जन्मदिन कल था, बधाइयाँ फिर से देते हैं। और देव रामोन देव शोभा संजय और एक भाई खास करके सब मिलकर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। देवुआ भैया की देव कार्य करते रहना, अपना कार्य यही जिंदगी है, जिंदगी में जो आप करेंगे सु कार्य अच्छा कार्य करेंगे वही साथ आपके जाएगा, पैसा लत्ता और खास करके पैसा कपड़ा लत्ता ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा दोस्तों। घर द्वार जितने आप खास करके जिंदगी भर जोगा जोगा कर रखे हो, सोचते हो कि आपके नहीं कुछ नहीं, सुकार्य करते रहो, आपस में प्यार करते रहो, और जहाँ तक आपके ज्ञान है बुद्धि है अच्छा ही करिए, कार्य करते रहो। माता पिता जो है वो आप के जन्म दिया है, उनकी सेवा सत्कार करते रहना जहाँ तक अवसर है, जहाँ तक अथाह शक्ति है हमारी। और बेस्ट लव स्वास्थ्य प्रोग्राम में श्रीमती जो है विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से सभी बच्चों के लिए, सभी केंद्र क्लाइन केंद्र के लिए गीता खिसला की सरिता और उनकी क्लाइन केंद्र अख्तर क्लाइन केंद्र भी हो चुकी है ये माता श्री को, तो उनको भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम में श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से अपने सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्यार के साथ आशीर्वाद ये दे रही है। और क्या दे सकती है माता श्री इसे बढ़कर।

0: और जबकि इस नंबर पे फरमाइश आई सुनाम के रहने वाली है हमारी माता श्री श्रीमती बिशुन देवी बलदेव पूरन। दोस्तों आज के कार्यक्रम में उनकी सभी लड़के जो है जैसे कि शोभा रामोन देव और संजय भाई सभी बेटी खास करके युवती खिसला गीता शरीता और सभी केंद्र और क्लाइन केंद्र को बहुत सी बधाइयाँ शुभकामनाएं यूं ही देती है और आशीर्वाद दे रही हैं खुश है और साथ में हमारी खास करके उनकी सुपुत्र बेटा भैया देव पूरन जी उनके पास उपस्थित है और उनकी सेवा सत्कार जहाँ तक हो सके करता हूँ। उनकी फर्स्ट प्लेक्ट जो है दूसरे प्लेक्ट एक सुपुत्र के बेटा या बेटी को होता है बेटा के और जल्दी और जास्ती हमारी दोस्तों जैसे आपको मालूम है माता पिता की सेवा ही करना चाहिए ना। तो यहाँ तक बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अभी भैया देव खास करके जो आपने गुजारिश किए हो और विनती की हो तो ज़रूर मैं आपके लिए प्रस्तुत करेंगे इस नंबर के बाद में।
1: ये दुनिया बना
0: भैया चांद रघुनाथ जी
1: फिर चलाना बस
0: करीम क्रम सुधे हो ये महेंद्र कपूर जी क्या

भगवान प्रकृति क्या बना है दुनिया में हम कभी नहीं समझ ये पाएंगे ना, जान भी नहीं पाएंगे, फिर भी जिंदगी जीते चलो हमारी प्रिय। और दोस्तों यही तो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जहाँ पे आप चुन रहे और आपके साथ आप जो दे रहे हो बहुत ही खुशी की बात है। देवेंद्र सिंह शिवनाथ उन्हीं की आवाज में ये खास सिलेक्शन है। आप एक हिट स्टेशन पाहुन नुल सोईफन तक दिली तुम्हें सोईफन तक

तो अपने ही अंदाज में, और ये दिल की बात है, कभी ऐसा कीजिए ना, हाँ, वही मिलेगा।

Shabash Kadakar, Davinder Singh ji, Davinder Singh is you not. आप एक हिट स्टेशन बाहुन के माध्यम से

आजमा कर कभी देखो ना। तो होने वाली यही है कि जख्म जब मेरे सीने की बाहर जाएगी, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएगी। ये मत पूछना कि किसने दर्द दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे भी उतर जाएगी ना भैया। और यूं ही जो है खास आवाज जो है और देवेंद्र सिंह शिवनाथ मधुर आवाज

de vender sem seu nadina. और आप ही से कहता हूँ कि ऐ दिल मत कर इतना मोहब्बत किसी से, इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाए अपनों के हाथों से, किसी ने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएंगे। और इसीलिए आपको ये मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ही ने बनाए हो तो देखो। साई जो लिए हो, साई जो लिए हो, हाँ फिर से, साई जो लिए हो तो नाचना पड़ेगा ना।

ये राज बतलाते चलो भौजी। कैसे बना है यही तो सवाल कर होता है ना, और जवाब सुनते चल दो। रास को रास नहीं रहने देना।

0: हमारी भाई जो है और खास कलाकार से ये नंबर सुन रहे हो, पाहुन पे आप चुन है, आप ही किससे जन है। हाँ दोस्तों,
1: चल

ये संगीत की कलाकार हो दोस्तों, क्या कहूँ मैं, अपनी अपनी कला, अपनी अपनी पहचान,

कांग्रेस और सती माता जो है इन लोगों के कंठ विराजमान कर रहे, विजय विराज रहे, और जो है ये जिंदगी हमारी दोस्तों उसके बारे में ये राजेश शिवनंदन क्या कहता है।

यही घड़िया यही पल जो है याद आता है ना यूं ही, और आपसे कह दूं, रजेश कह गया, मैं नहीं, रजेश संगीत में। हाँ भाई, इरेन डंकवेल यानी यू का

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

बार शानू के साथ में अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका यज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे। अब का यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

हूँ हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए मेरे का सागर से भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आज भी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 3 यूनिट 20 सेशन 20 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये यशोमिल लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्यार और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मैथिली के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान कंटोर यूरिन ऑफ द फॉल्ड टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-3562-2640 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-3062-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी है en natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Fahon Hindustani Radio, toch? हमसे पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके विजयंती बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से विजयंती बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है। ये यश उम्मीद है साथियों की उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप जरूर को आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से विजयंती बहन जी और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि एंड टचिंग सर। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियों में भी लगे हो। जो भी खुशी का दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। औ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। औ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। व्यवहार लाचार या आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिंदी दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए और जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु। ये मत भूलना मतलब है और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना। फन हर्त बीच कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड फॉर ऑल खास दौर बंधु। और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है। मोर्ख ईश्वर अंदख दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ उतराव जोर तोर से बढ़ाते रहना और कोशिश भी साथ ही साथ जारी रखना यारो। देखो मेहनत तो है दौलत के यारिया ना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं। कोशिश जारी रखना, नेवर गिव अप
brother na sisa. So salomi lobi and blessings to all of you, and natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dus we promesse met u, hamare voetien kieder op zee zo zwaag, dan fijne vakantie. Blijf luisteren naar Vagen Hindustani Radio, you gonna like it. En dat meen ik ook hoor. Over hoe zekta hai na, ki aap des ko chodke videsh yatra pe ja rahe hai, to aapko bhi ek shubh yatra, fijne vakantie, geniet ervan. Tamam log sunte hai Vagen Hindustani Radio ko internet ke lehro dwara op een laptop, tablet of smartphone is ook mogelijk, hè? Toabi, sunie hem loko. Zo bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk maar Den Haag, Sherka. The one and the only Vagen Hindustani Radio. 24 hours at your service, mi guru. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत सदियों से मैं करते आ रहा हूं वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ एक फिल्म ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरु का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैब तू नास्ताल तेजलीफ है बंधु कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम बुधवार का रात्रि का संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओथ इज गोथ और उसके बाद आप नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना साथियों मजे लेते रहना वंट हैथ लिवन डू इट ओसो कोर्ट है रवि साहब जी हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत

Mușcalo, mușcuralo, mefile, săgealo, hămișa chitra, program ca survat. Tu satiu aici ca ai să zin în atri ca program mai survat că nevala hu, e că ati sunt raga că sat, taie Yeshoda, from the movie Morning Muraga. और कंपोज किया है थोड़ी रगम राग में और गाने वाली है मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत जावेद अख्तार का ये जो है गाना वाइफ द ब्यूटीफुल एंड द बरुंड एक्ट्रेस शबाना आजमी जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुनिए.

song, wonderful song, composed and sung by Maestro Dada Hemant Kumarji uit de film Hill Station 1957, zat hier T. Queen of Melody, Lata Ji. Found in the Shani Radio pe aap chun hai saatio, budhwar ka raatri ka program aap sun rahe hai, Geet aur Ghazal Oat, is Gold Sangeet Garab ka daastan naam karyakram, 4 मिनट बाकी है 8:30 बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है एक फिल्म अनुपमा 1966 और एक और जबरदस्त धुन जो दादा हेमंत कुमार जी ने बनाया था भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के लिए और ये तो बहुत ही चला ये नगमा उस जमाने में एक सुपरहिट सॉन्ग अभी तक लोग सुनते हैं तकरीबन 20 मिलियन व्यूज भी मिल चुका है जब से ये नगमा को YouTube पे धरा गया था 2011 में वन ऑफ माय फेवरेट लता जी का धीरे धीरे मचल

0: उठो ना, गा।
1: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
0: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गा।
1: मुझे बहुत दुख होता है, तुमने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
0: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
1: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
0: कहां से सीखी?
1: सीखी भी नहीं।

ये था कैफी अस्मी जी का और आवाज डवन एंड ओनली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का। दो मिनट गुजर चुका है साथियों, 8:30 अगला बयान कुछ दादा हेमंत कुमार के याद में नगमे आप सुनेंगे और एक नॉन फिल्म सॉन्ग जो दादा हेमंत कुमार जी ने गाया था, म्यूजिक दुर्गा सेन ने दिया है। ये थी सुंदर बयान सन आवर क्लासिक नंबर नोइट फोर को मैन फिल्म। मिलके सुनते हैं, दिल को लेकर तुम किनारे हो गए।

तो वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञानियों के लिए। पुराने जमाने के महान पढ़ा लिखा विद्वान श्री कॉन्फ्यूशियस ने कुछ कहा है जिंदगी लेफन जीवन के बारे में। हाय वसन सीनेस फिलोसोफ एंड लेफ द फन 479 तक 551। यह शो मैं लेकर मैं इन बातों को

Beautiful Song, gezongen en gecomponeerd door Dada Hemant Kumarji, live gezongen. Teramlit Regia is uit je nou, wat je niet meer glabian, ik bar vier woeimanen van Kari. जिसके याद में ये छोटा मोटा प्रोग्राम मैंने तैयार किया है द ग्रेट दादा हेमंत कुमार जी तुमने मुझको सदा जलाया क्या बात है मिलकर सुनते हैं ये छोटा सा गजल कंपोज एंड अरेंज बाय मेस्ट्रो दादा हेमंत कुमार ओक दोर हेम गजोंग एंड गेस्क्रीफ दोर जबरदस्त लेखक उस जमाने का मधुकार राजस्थानी

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर वन एंड ओनली देन हाक्षर का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर तबलाइस्ट्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाहन फाहन FM.NR पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। And naturally, works boys and girls, so salubi lubi and blessings to all of you, and naturally, bedankt for het luisteren. जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी 07365 2247 पर आप तार करें। दफ्तर का तार का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर 07362 2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायती सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। जरा आप आजमा कर तो देख। 07365 2247 पर आप तार करें। Bent u nog een lid van Fahun Hindustani Radio, to guzar is binti nibidin kia ja raha hai, kia bhi jild se jild Fahun Hindustani Radio ka member bane, auron ko bhi banaye. Aapko to dher sare fayda hi fayda hai. Recent hai woh kaun se ek Fahun karaoke team, waar heel veel sangers die bij ons omroepen in de studio live voor u gaan zingen. Stuk of 8 doen zeker altijd mee bij op onze optredens. Dus volg social media van ons en onze omroepers. Dan hoort u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u live gaan zingen. Wabi, Fahun Hindustani Radio ka member bane auron ko bhi banaye, aur jo chota sa aur mota sa ye Fahun Hindustani Radio ka parivar jo ban chuka hai aur jo bante ja raha hai, aap bhi aakar usme shamil ho jaye. Sabhi jankari aap tar kare ab 07365 2247 par en vraag naar onze teamleider, the one and only maestro Johnny number 1. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना साथियों, रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी हैं ना। और इसके लिए आप सभी को हमारे फुल टीम के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और के मुताबिक एक हिदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म राजा जानी तक, जो रिलीज किया गया था नेक दिन सीखन तक ने। और इस मूवी में द ग्रेट एक्टर द ही मैन द हिट मैन धर्मेंद्र जी ने काम किया है अपने ब्यूटीफुल सेकंड वाइफ द मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ। महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है, आनंद बख्शी के अल्फाजे है, और कुछ गाने बीते हुए हफ्ते में सुना चुका था आप सभी को, और कुछ गाने इस फिल्म में से रह गया है सुनाने को। तो एकदम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी के लिए सुनाने को। फिल्म राजा जानी 1972, और लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे भारत के स्वयं सरस्वती माँ जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे मुबारक हो तुझे ऐ दिल।
a beautiful song, sebi sebi sat hill ke na

beautiful song, Mubarak, who tujhe ai dil, from the movie Raja Jaane, 1972, music director Lakshmikant Pyare Lal ke saansh par, Alfaz e Thanand Bakshi ji ka, aur awaaz Bharat Ratna, the great Lata ji ka. 14 मिनट गुजर चुका है, 9 बजकर 7 हो और आप चुन है आप ही का हैप्पी हैप्पी रेडियो स्टेशन पर, हमारे दिनाक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर. अब प्रोग्राम चल रहा है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम. नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द हीमैन द ग्रेट हिटमैन धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और हम पहुंच चुके हैं फिल्म राजा जानी तक. अगला बयान टाइटल सॉन्ग है, उस जमाने में 1927 तक में ये नगमा किशोरदा के आवाज में क्या हलचल मचाया था हमारे सूरीनाम देश में. जानी ओ जानी

Beautiful song, the title song also from the movie Raja Jani. Haseeno ka pujari aur sangeetkar ka badshah aur sahinsha, the one and only किशोर दाजी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना है। कॉम्पोनेट दो और महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तो साथियों, सभी नगमे आज फिल्म राजा जानिनी का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1970 में, फिल्म ललकार। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाए हुस्न द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस माला सिन्हा जी के साथ। राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में काम किया है कुमकुम एंड कॉमेडियन देखा जाए, और बलराज सानी जी इस फिल्म में भी काम किए हैं। महान लेखक हसरत जयपुरी, इंदिवर और कुलवंत जानी तीन लेखकों ने ये फिल्म में काम किए हैं, गाने लिखे हैं। और महान संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साथ है। तो एक जबरदस्त डुएट आप सुनेंगे, और सुनने को जा रहे आप सभी को एक बार फिर सुरों का देवी डगड़े लता जी साथ दे रहा है द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी। कुलवंत जानी का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग जो इतने चले यार सेवन तक में जो रिलीज किया गया था, खास करके फरमाइश विवाह संस्कारों पे और महफिलों में ये गाने डुएट के रूप में गाए जाते थे उस जमाने में। सुपरहिट सॉन्ग बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और अल्फाजे क्या है जरा ध्यान से सुनिए, अ ग्रेट लव सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे तुमसे प्यार है। अति सुंदर बयान है एक फिल्म ललकार 1972 कल्याण जी आनंद जी के साथ पर, और गाने वाले थे लता जी और रफी साहब जी। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुने यारो, 5 मिनट बाकी है 9:30 बजने। अगला बयान मेरे महबूब मेरी बात, अति सुंदर सॉन्ग है, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और इस बार फांसे है हसरत जयपुरी जी का। आवाज है उस जमाने का ग्रेट सिंगर द ग्रेट मनहर उदास जी, और खूबी के बात यह है कि मनहर जी का साथ दे रही है द ग्रेट मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन माला सिन्हा जी, जो एक अच्छी सिंगर भी थी, साथ साथ अख्तर के साथ महफिलों में भी गाती रहती थी जैसे कहा जा रहा है। तो मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर बयान मेरे महबूब मेरी बात।

0: क्या बात है माला सिन्हा, और मनहर उदास जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कॉम्पोनेडोड ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी अल्फाजे था हसरत जी का एड फिल्म ललकार 1972। घर के तरफ देखता हूं तो 9:30 बजने वाला है। साथियों अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार भारत रत्न लता मंगेशकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में। कल्याण जी आनंद जी के साज पर कुलवंत जानी के अल्फाजे एड फिल्म ललकार। साथियों के साथ मैंने कहा ना ना ना,
1: मैंने कहा ना ना ना ना ना,
2: फिर
1: उसने कहा हाँ हाँ हाँ,
2: फिर

ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथियों के साथ गकॉम्पोनेट डोर ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी अल्फाज कुलवंत जानी का और फिल्म ललकार में से ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना।

साथियों, 5 मिनट गुजरने वाला है, 9:30 वक्त हुआ है ना अब कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर की चाहने वालों के लिए। कुछ ताजे ताजे भेजा है भाई भूपेंद्र जी, जो तकरीबन कुछ 12 साल से मुझे मुंबई सिटी से लिख लिख कर भेजते रहते हैं, और इस बार कुछ साकी और शराबी के बारे में। अर्ज क्या है ये साथियों की, लफ्जों के फसाने ढूंढते हैं हम लोग, लफ्जों के फसाने ढूंढते हैं हम लोग, लम्हों में जमाने ढूंढते हैं हम लोग। तू जहर ही दे शराब कहकर साकी, तू जहर ही दे शराब कहकर ऐ मेरे साकी, जीने के बहाने ढूंढते हैं हम लोग। महफिले इश्क सजाओ तो कोई बात बने, दौलते इश्क लुटाओ तो कोई बात बने, जाम हाथों से नहीं है पीना मुझको, जाम हाथों से नहीं है पीना मुझको, कभी आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने। क्या बात, तेरी याद ने हमें जीने ना दिया, तेरी याद ने हमें जीने ना दिया, चैन से हमको अब मरने भी ना दिया, हम पीते हैं तेरी याद में जालिम, हम तो पीते हैं तेरी याद में ऐ जालिम, पर इस दुनिया ने हमें पीने ना दिया। तोहफे में मत गुलाब लेकर आना मेरी जान, तोहफे में मत गुलाब लेकर आना, मेरी कब्र पर मत चिराग लेकर आना, बहुत प्यासा हूं बरसों से मैं, बहुत प्यासा हूं बरसों से मैं, जब भी आना शराब लेकर आना। क्या पीने दे शराब मस्जिद में बैठ कर ऐ मेरे गालिब, पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठ कर ऐ मेरे गालिब, या वो जगह बता जहां खुदा मौजूद नहीं है मेरे गालिब। साकी देख जमाने ने कैसी तहमत लगाई है, साकी तू देख जमाने ने कैसी तहमत लगाई है, आंखें तेरी नशीली है, आंखें तो तेरी नशीली है, शराबी मुझे कहते हैं। ये भी होता है यारो। तो ये था कुछ शेर्स, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। आप तो सभी जानते हैं ये हमारा जो सॉन्ग है ओपनिंग सिलेक्शन का, प्रोग्राम का शुरुआत, ये भी इस फिल्म से निकला है ना, आँच गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। तो ये गाना 2 फैशन में इस फिल्म में फोर आया था, पेश किया गया था, एक सेट और एक हैप्पी फैशन। तो आप ये हैप्पी फैशन तो हर हफ्ते 2 बार आप लोग सुनते हैं।

लेकिन एक बार मैं फिर सुना देता हूँ, क्योंकि फिल्म ललकार का ये गाना है, धर्मेंद्र जी का फिल्म का गाना है, तो सुनाना तो पड़ेगा ना। तो एक बार फिर ही सही, उसके बाद सेट सॉर्ट्स फैशन भी मैं आप सभी को सुनाऊंगा। रवि साहब और साथियों के आवाज में कॉम्पोनेट डोर नटिलग्ड ब्रुदर्स कल्याण जी आनंद जी एट फिल्म ललकार 1972 उस जमाने का सुपरहिट मूवी था। और लेखक है इस गाने का डिग्रेट इंदिवर जी। ब्यूटीफुल रिमेम्बरिंग सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय साथियों के लिए एक बार फिर सही।

जरा मुड़ के तो देख कुड़िये आते जाते एक फिल्म ललकार निकलिंग ट्वीन सीफ़टर रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक आखिरी सॉन्ग रह गया है एक फिल्म ललकार सुनाने को, मैंने वादा किया था द सेट फैशन आज गालो मुस्कुराओ को सुनाने के लिए आप सभी को रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। दर्द से भरा हुआ ये नगमा है, मिलके सुनते हैं एड फिल्म ललकार कॉम्पोनियड और ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और अल्फा से है इंदिवर जी का, जरा दिल को संभाल लीजिए।

Muskuralo, Mayfilis Sajalo from the movie Lelkar, the set version na perso tawni suna, suru kabacha, revisab jike, beautiful, madhur awazmi. तो साथियों सभी नगमे फिल्म ललकार का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था आल्सो इन 1927 तक में, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, फिल्म अनोखा मिलन। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है द ग्रेट एक्ट्रेस प्रोनोती जी के साथ। महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने इस फिल्म में भी काम किया है, केशव मुखर्जी, अभि भट्टाचार्या और महान संगीतकार सलील चौधरी सलील दा के साज और संगीत है। और सभी गाने लिखा है उस जमाने के महान लेखक द ग्रेट योगेश जी। फिल्म अनोखा प्यार यानी अनोखा मिलन होना चाहिए। फिल्म अनोखा मिलन से आप अब नगमे सुनेंगे। कति सुंदर बयान रख चुका हूं प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। पद्म भूषण मन्ना डे जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान। कंपोनेट और सलील चौधरी, बंधुरे ये मंडोले बोले क्या रे कोई ना जाने।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट व्यतीत हो चुका है 10:00। 3 जून 2020 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नेचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर हेट लोइस्ट्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे डेंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेनिस कंतूर उर भनमान अख्तवत फ्रेडाख अप 0703562247 कंतूर का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 0703562247। तो जो भी रेडियो का काम हो ना, देंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो बन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड रिसेंट है वो ओक उनसे एक कारा ओक संग कृपया फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और फिर ओम रूपर्स लाइफ फॉर यूरी खान को सिंगन। Volg onze social media's en omroepers, dan hoort u of ziet u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u gaan optreden. En dan bent u ook van harte welkom natuurlijk. Hè. Kom en steun de zaak. To Abhi Akar is jo chota aur mota sa faun Hindustani radio ka parivar ban chuka hai na, usme Abhi Akar shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap tar kare apne 0703562247, dan wordt u automatisch door verbonden naar onze maestro, de teamleider van faun Hindustani radio, the one and the only maestro Johnny number one. En natuurlijk bent u van harte welkom. Wat ik moet hebben gekregen, dan wordt het programma ke taraf kuch nagme reh gaya hai sunane ko. Uit de film Anokha Milan uit 1972 se gaane chal rahe hai. Agla bayan Man na more sata punane zamane ke mashhoor gaane wali Sabita Chaudhary ji ke beautiful awaaz mein composed and arranged by Salil Chaudhary ji.

Beautiful song, wonderful song, आप श्रोताओं ने सुना, क्या बात है। Uit de film Anokha Milan 1972, उस जमाने के मशहूर गाने वाली सबिता चौधरी जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोनेर्ड और सलील चौधरी जी। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी अनोखा दान। और ये क्या हो, अनोखा मिलन होना चाहिए। हेल फिर फरकेरे टेक्स्ट ऑफ द फरकेरे प्लाट्स प्लाट्स गबेट फाक बाय यूट्यूब और गाने का बोल है, हमें याद कभी तुम कर लेना। क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी सलील चौधरी के इस साज पर, द फिल्म अनोखा मिलन।

भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ऐड फिल्म अनोखा मिलन लेखन दिन टू सेवत कंपोनियर डोर शलील दा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड आप सुन रहे हैं और घड़ी की तरफ देखता हूं तो 14 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और एक बार फिर सलील चौधरी के साच पर सबीता चौधरी के आवाज में तोरो सोंदो एक नेपाली सॉन्ग आप सुनेंगे। ऐड फिल्म अनोखा मिलन नेहरिंग ट्वीन सेवन तक

Jati Sunder Nepali song after Shrutani Suna Toro Sondo Sabita Chaudhry ke Avance me, composed and arranged by Maestro Salil Chaudhry and the film Anokha Milan. अगला बयान मत भरी ये हवाएं एक दूसरी अंदाज में आप सुनिए लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोनेट और सलील चौधरी जी और अल्फाजे है महान लेखक डेग्रेट गुलजार जी का

अति सुंदर बयान मत भरिए हवाएं इधर फिल्म अनोखा मिलन 1972 से अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो साथियों सभी नगमे जो फिल्म अनोखा मिलन का आप सुन चुके, तो कुछ आखिरी शेर शायरी हो जाए ना, 8 मिनट रह गया है 10:30 बजने में और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। अर्ज किया है साथियों कुछ आखिरी शेर से, यूं तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर, क्या बात है, यूं तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं। कहते हैं पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में, कहते हैं कि पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में, हमने तो देखा है बुजुर्गों को जवान होते मैखाने में। पानी से प्यास ना बुझी तो मैखाने के तरफ चल निकला, सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, सोचा था शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा ही आशिक निकला। मैं खाने सजे थे जाम का था दौर, मैं खाने सजे थे जाम का था दौर, जाम में क्या था ये किसने किया था गौर, जाम में गुम था मेरे अरमानों का, और सब कह रहे थे एक और एक और। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में साथियों, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा तो धीमी बरसात का भी है, हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, इस दिल पर असर तो आप से मुलाकात का है। था कुछ आखिरी शेर और आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक आखिरी सॉन्ग जो मैं सुनाने वाला हूं आप सभी को, ऐद फिल्म अनोखा दान अनोखा मिलन ऐट नई हंटिंग तक, छोटा सा एक कुप्लेट।

माना कि है जिंदगी ये सफर ऐड फिल्म अनुक हामिलन 1972 गकॉम्पोनेर डोर माएस्ट्रो सलील चौधरी और गाने वाला हमारे महान गायक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पद्म भूषण मन्ना डे जी साथियों के साथ। तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीके से मैं आप श्रोताओं को कोशिश किया सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया यारो, तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप एक छोटा सा प्रोग्राम सुनेंगे हमारे टीम लीडर के जरिए मैस्ट्रो जॉनी नंबर 1, और 11 बजे के विज्ञापन और देश विदेश का समाचार के बाद आप सुनेंगे आज का एक हेरहालिंग फनेट फन मिडाग प्रेजेंटेड न्यूज डोर ऑनसे एयरवार्ड कोलेगा एन ग्रोटे ब्रदर द वन एंड द ओनली ऑनसे जर्नलिस्ट एन कोरेस्पोंडेंट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो बड़का भैया माएस्ट्रो रोमियो होस्ट के जरिए, और उसके बाद खान लेकर ऑफ नार ऑनस नख्त प्रोग्रामेरिंग में फिरस्किलंद उम्रूपर्स। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, हमें आप सभी इजाजत दे, और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ, और आज एक छलांग लगा देते हैं वही महान फनकार दादा हेमंत कुमार के याद में।

अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम, फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी, ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म निखत इंद्रिय शस्त्र का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना निखत इंद्रिय शस्त्र का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का, ये गाना और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहित होने निहित सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहाँ से हम चला देते हैं और यहाँ से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है ही नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ। मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंहमांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पाँचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वालों बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि

वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। आचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोग के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: सुनने वालों, आज हमें कैसा कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ लिया है जो हमारे गांव का और जो तनाख ट्रांसवाल का बड़ी माँ कहलाते हैं, बड़ी माँ का। और ये बात हो जाता है कि हमारे शहर में और जो तनाख शहर है और वहाँ जो ट्रांसवाल खदीलत है जिसे हम प्राख्तवाइक भी कहते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं और सूरीनाम देश से आए हैं। सूरीनाम देश से आकर के और वो वहाँ पर रहते हैं। माए को हम हार्दिक से स्वागत करते हैं। माए जी पीए कबारे
1: कबारा पे
0: एक साल तो इन नीदरलैंड्स दून वांट दी हिंदुस्तानी दैट इज अ बिट मुइलक ऑफ हैव टू दैट ओक स्प्रोक फ्रूगर माए
1: Mi tang fosina sekerpi, mi tang yung foto marambarak, mi sosisi afusensi bisensi, tuan lep hang halusen, namun dat mi bi naidin nasar nang fosi.
0: कुछ पुराने बातें हैं और माए जी जो बड़ी माँ कहलाते हैं। दामसनेरन अतखात ओक रोम फन माए इस या नई खन तख यार आउत और नई खन तख यार आउत होने से तो कैसे उनका जन्म हुआ अभी हम वो भी पूछेंगे, पर माए जी से ये पूछना चाहता हूँ कि माए हु फेल हिफ्टी इमेदल साल क्लाइम केंद्र ऑफ केंद्रन
1: Ya, mitrong gramcing ba kender mak kender. Dus gramcing, meki gramcing, meki cing pa. Gramma over gramma.
0: Ses generaties gezien. Mae is 90 jaar en ses generaties gezien. Mae, maar we willen ook weten hoe u heet.
1: Mari.
0: माए जिनका नाम हम बड़ी माँ से और मफ्राओ मारी कहलाते हैं और माए फोर दत वाई फेरदर खान एक बन मिदे सो म्यों सभी तक वी वास यू फादर एंड वी वास यू मदर एंड वारस आउट इंडोनेशिया ऑफ वारस इन सूरीनाम खबोर
1: मी कबोरे सूरीनाम फादर फन इंडोनेशिया मदर फन इंडोनेशिया एक कबोरे सूरीनाम
0: Maar dan zult u vast wel wat gehoord hebben van uw vader en moeder, verhaaltjes van Indonesië.
1: Zodat so minus hebben we want een minamiti dat die voor haar verzaam. Atoor dat minus hebben.
0: Maar heeft u nog broers en zussen in Suriname of in Nederland?
1: In Suriname heb ik een minabradamoro. Ik heb alleen een zusje, twee zussen. नहीं मेर
0: जैसे कि माए जी कहते हैं कि उन्हें दो बहन अभी सूरीनाम में हैं। और दोस्तों, ये जो बात अभी माए और कहे कि पुराने बातें और जैसे कि अभी अफसेंसी बिगी सेंसी आदि माए अतें दाती उन्होंने बेंदे खबर एते अफुसेंसी नगा दे सान दाती किंतु मेर फरतेल दर ओवर
1: Tien sensi, dan een vijf sensi, bigi sensi, dan een afu sensi. Dat mi sabi. Dan pe mi paroko, susok cimoni ekisi. Dan mi teke na loket. Na Suriname, ya.
0: Da pe yu papa beroko mai?
1: Mi papa beroko na boto, gopuru kofi. Temi mu teke in sensi. Taki mari goteki mi sensi gimi suso afu sensi bigi sensi fef sensi tin sensi no wan tra sensi no kisi namoni dat dai kisi not moro
0: at was wat wij hier zeggen dat klein geld hè
1: klein geld suso klein geld no wan ti papira moni no de suso afu sensi bigi sensi tin sensi dat ti wan
0: Mai en u bent 90 jaar, dus dat is heel wat jaren terug. Or, jab dekha jai, wat was de salaris van een persoon in die tijden?
1: Mi pa roko nanga boto, tepo nanga kuliara boto ko puru kofi. So sop chikmoni dati kisi, so afu sensi, bigi sensi, fef sensi, dati ek bipa kisi, not moro. No ang papira moni no kisi.
0: Nanga
1: na yaklos wasi na skerpi da pembende da pembe kabora ya
0: yaklos yaklos sei krepi
1: ya yaklos ya yaklos nanga skrep sker sker sker skerpi skerpi yaklos da pembe kabora
0: Dat na Paramaribo of buiten Paramaribo?
1: Paramaribo, Suriname, ja.
0: Paramaribo, Suriname. Suno hallo, hum ek sundar sa geet ke or badhenge aur geet ke baad mein abhi hum Mae ke saath phir aur bhi sawal karenge. Jaise ki aap sun rahe hain ki ek Suriname, Jambi aur yani ki Yafans of Coms jo Indonesia se ja kar ke Suriname mein base aur uska beti unka mata pita dono Indonesia ke janam the aur unke aur nahi bataya gaya ki kaun shahar sa Indonesia ka wo the par phir bhi और माए जो 90 साल का है उन्हें 6 जनरेशन देख चुके हैं अपना और अपने बच्चे का बच्चे इस प्रकार से और हम एक गीत के बाद अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे

0: चलो हम माए जो हमारे बड़ी माता कहलाते हैं ट्रांसवाल का, और मफरो मारी जी के साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, और उनके साथ ये और संदेश बनाया जाता है। माए मार यू पापा बेवरको ना बोतो ना कॉफी फैब्रिक मा सा यू मामा बेंदू
1: मीमा रोको प्राणी आलेसी मीमा नो रोको नो प्रिशो से प्राणी आलेसी ना मी पापे पूरु कॉफी ना ना बोंग ना गफ कुलियारा बोतो अब्रा दाद मी पाए रोको 530 सेंडो आंदे दाते दाते सात्रा तिमे टेकिमोनी दा सुसो को प्रोसेंसी ना गा अफुसेंसी बिगिसेंसी फेफसेंसी दाद मी पा ओनफांग
0: मार माए यो मा बे प्राणी आलेसी लिखवाई ताकि दा फा आलेसी प्राणी बे दे एन फा आबे फरदीन
1: या मे मा बे पुरु प्लांशु मे प्राणी आलेसी दा मी मा रोको वाहेर दे रोको क्वार्ची क्वार्ची वाहेर दे फोसी बुको पुतें मोनी नो बे दे अबे पिना क्वार्ची हेर दे क्वार्ची वाले हेर दे क्रोशिस रेफिनो बेंदे बेपिना को फालक फोसी सो मेनी सान बेपसा नंगा मीमा फोसी क्रोशिस रेफि मीमा नो मां बाई क्रोशी किमी मी बाका सो नंगा वांग क्रोशी मी वासे मी वेरिंग बाका सो बेपिना मीमा बेपिना क्वेक मी अन मी नो मीमा बेपिना आलेसिस रेफि नो फेनी फुबोरिस रेफि इसाब दिंग पास पास आलेसिक मुपुना बोंग दा मीमा पुरेंग Mima baka alisi na pang dai puru alisi dai gobori. Puru puru posi mi yang karu dan na alisi fuhu na nga belput dan mi yang posi. Ibat mi bepina posi na nga mima yara. Mi pane na mi pane radio en mi mane bokario. Bokario di mi jo dan mi mane.
0: Yupa ning radio na nga yuma ning
1: मुजीना
0: या तो सुनने वालों पहले का गरीबताई कैसा था, और हमारे और माए जी ने और उनका माँ किस प्रकार से मेहनत किया। पर माए प्राणी आलेसी एफ नो नो सो मेनी सुमाए येरे रेडियो एंड फुरुस मा मेरेंडेल फन मेंस दी इन नीदरलैंड लुइस्टरार सेन मेरेंडेल्स दिंग खबोरे जासो माफु प्राण आलेसी ना मकला कुरको तो
1: अनो मकला कुरको वांदा मिमुस को पुरु आलेसी प्राण शु दंग बुको प्राणी हेर देने ना वात्रा सिखियुरु मांटिंग ते सिखियुरु बकानक बपो एता वात्रा आरो को तरांगा फोसी मोनी नो बेंदे
0: माए मार आरो को तरांगा मार
1: इन वांसमा अनो आरो को वांसमा तो साय ने देते फुरकु मांटिंग विकी कांदे यो यंग बिताउ बिरी ना गावात्रा सोंदर नोटी नोटी पिना या बिताउ बिरी बोरी ना गावात्रा वे यंग ना गाव आले सिदाती नो अनु ओली नो दे नेक्स्ट मे पिना आई थिंक दैट मी बे पिना फॉर मी मैक वेक मी

0: सुनो हेलो, हम जुड़े हुए हैं और आज एक यफांस माए जो सूरीनाम में जिनका जन्म हुआ है, जो कुछ 90 साल से है और हम सब के अपना पुरानी बातें और सुना रहे हैं। माए ओइट इगोना इंडोनेशिया बाका
1: नोइट मी गोना इंडोनेशिया मी नसा मी ओमा मी तांता मी ग्रामा मी नसा बिन ओवांग पामीरी द्रापे de mi no gona Indonesia noit mer noit mi go
0: mae ma di yube yongu ateng dati ano so so roko iben fa abende on spanning the day in a libi of ano bende
1: ano bende mi de chini gre mi no sap noti ma mi mai sor ke minya nanga bitaviri nanga watra nanga vitali ci dati wang mi no sap noti
0: Bita Viri Nanga Watra gekookt, dames en heren, wij hebben de luxe, wij zijn in een veel luxere periode geboren. Aur jaise ki pehle dukh hota tha mata aur betiyon ko lekar ke met de dochters ook reis gepland naar mij.
1: Ja, luko posi de mi tami pe mi tang, jab den alesi grasi tok datami matrasi, nanga chatai sribineni. Sneki de drape e wakana undro or snak setai te mima puring mitak mikado koloko dat agonami yesi of nagoma mi bela au bet mi koloko dat gado segi takano dunoti
0: so erg jo aapne sune sune walo ki pehla garibtai me pani ke samay pe aur saap aadi bhi aa jate the aur पैरा का बना हुआ जो जो बेड होता था और चटाई पे सोया करते थे और माए जो अपना वृतांत बता रहे पर माए यूत्रो वन ओ मे ओ ओ रो युबेंदे दा यूत्रो
1: दिमित्रो नांगा मी मासरा मी बेंदे कमी 20 साल
0: के माए थे तो उसका शादी हुआ और माए हो मेनी पिकिंग यू अभी
1: टोटल में अभी 25 ग्राम चिंग ना मैं अभी सेबी चिंग तंग
0: यह भी सेबी चिंग पर माए वहाँ से हम मिनो बखरेप तंग ने देव थी दे फोसी नो नो सोलेसी येरे सो माए सो मेनी अभी मी फा अबेंदे दत अला प्रेसिस सेल्फ द

0: Păi da, mino sabina gadotori.
1: Datna gadotori. Suno alo, jaise ki abhi aapne sune. Aur 25 gram ching aur uske aur bacche ke bacche ke bacche yani 6 peedhi talak aur mai ji ka aur जा करके बच्चे हैं, तो हम और भी प्रश्न रखने वाले हैं माँ ए जी के साथ। और फिर भी एक गीत चला देता हूँ और गीत के बाद हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं।

0: meisje, links, die waar we boy rechts.
1: Mama, ik niet begrijp helemaal. Tewanwang meisje da links, Tewanwang boy rechts. Zij wan taki eigenlijk?
0: Nee, gewoon je schrijven in zee gewoon. Links, hier jaar je. Ten ik de zwangerschap, je kiest wan meisje, die proosje go naar rechts. No schrijven daar bij moro. Tewanwang boy daar schrijven naar rechts, die kiest wan boy. Ja, dat Tewan.
1: तो सुनने वालों ये भी एक गुप्त बात है जो माए ने सुनाया कि अगर आपको बेटी और बेटा का अंतर होना चाहिए तो आपको किस ओर सोना है और कैसे आपको पर ये इन बातों को तो शायद अब का वैज्ञानिक की इस बात को नहीं मानेंगे पर उनमें है कि जो पुरानी बातें हैं वो भी अपना रखते हैं माए वह हबन मोय वत फरहाल चस्फानी को न हो रहा मार फोसी Wang plantation in Marienburg. Is dat wat zijn die voor Marienburg?
0: No, mijn is op mijn kantoor, dat is Marienburg. Maar mijn sabaan niet voor Marienburg, want mijn deep zien in gre. Mijn deep, pas in mijn geboren, mijn pabinkje op na jong foto, na Marienburg, dat is mijn dan. Zo mijn jere, maar verder mijn is abi.
1: Maar in jere dat Marienburg de meki Malasi de meki Sukru.
0: Ja, fosie ja mi maberoko puru na Kapuking. De egolai na trem. Ai roko tranga.
1: Yu ma bendefu Marienburg.
0: Ja.
1: Di akong.
0: Ja, di akong ya meroko dape mai tanas kerpi. Dus hij roept dat hij gokoti urking dat hij in a tram. Gomeki shukru.
1: Dat na pas die den konfu, zeg maar, als contractor uit Indonesië.
0: Pinating, dat is pinating. Ja, dat hij roept dat hij dat bij mij doet. Kosorku deepchi.
1: और सुनने वालों अगर आपको इसके बारे में भी हम सब एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं कि प्लांटाश जो और जाकर के मारियमबर्ग जो हॉलैंड के समय पर बनाया गया था उस अंतर्गत में कुछ जानकारी खोजा गया है और हम सब तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में और जल्द से जल्द एक प्रोग्राम बनाने के लिए ताकि हमें कुछ और भी जानकारी वहाँ का मिल सके इसमें और भी जोड़ देना चाहता हूँ कि माए जो हमारे साथ है माँ मी अभी वेल फ्राख वांत लुकु नो नो तिंग उनु नो देसो त्रांगा यू नो मी बखराइब तक साइदे यू देसो त्रांगा ना बीतावीरी ना गा वात्रा बोरी
0: या बीतावीरी ना गा वात्रा मी माई बोरी दात मी न्यां हाँ पिनो न्यां त्रासान मोरो मिनो न्यां नेक्स दात इवांग ते दे ओपो पिना तेंतो
1: En dat maak je dus zo tranga toe?
0: Ja, mij dus zo tranga. Maar ik had ook niet genoeg dat ik die tranga krijg. Heel leuk om je. God zegen.
1: Sune walo, jaysa ki abhi aapne sune ki God zegen. Aur jo माए जो जिस समय पे तेल नहीं मिलता था और बीतावीरी जो पानी में बना करके और चावल के साथ खाते थे एक माँ जो अपने बच्चों को इस प्रकार से परवरिश करते थे और आज माए और जा करके 90 साल के आयु में और अभी भी तगड़ा भी चल पाता है और माए पा मा युवा ताकि तेख द यंगर जो हम द यंग लॉयस्टर्स दी देस प्रोग्राम नू लॉयस्टर फन मुते सो वाट डून आन हन एट वांट
0: या नो नो नो यां बुंग जासो मा फसी मी मी नो यां बुंग दी मी कोन जासो मी यां बुंग वेल
1: दी कोन दाई आला टाइट द नो ना ट्रैटिंग ट्रैटिंग श्रीमती मारी जी जो हम लोग के साथ एक कार्यक्रम में जुड़े और यानी कि अपना संदेश रखे हमारे लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एक गीत रखना चाहता हूं और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब अभी विषय की ओर बढ़ेंगे और विषय के बारे में हम सब रखने वाले हैं और भी संदेश माए मेवान दंग की ताकि tangi heel, heel hartelijk bedankt dat we u, dat we u mogen hebben interviewen en dat uw stem in de archief, in de digitale archief bewaard zal worden. In die zin van wij zullen de programma wel eens herhalen en dan kunnen mensen naar uw stem luisteren.
0: Alsjeblieft.
1: Dank u wel, Maya. Maar waarom je nog begrijp je helemaal het heeft? Je tak links sribi, rechts sribi, dan je kiesi meisje naar een boy. Maar ik kan vertellen hoe moro boom fai je bedoel.
0: Sami bedoel, deze ribi naar rechts, dat dan tak ik kiesi van boy. En je ziet naar links, dat dan tak ik kiesi van meisje. Dat naar recept sami gi. Sami ma emit mi matemi, dat bi bi kaporeki.
1: Dan, maar soma moet sribi links naar rechts. Is het die vrouw of die man?
0: Dus een vrouw. Je sribi wel een presie. Lekker een man, maar een vrouw moet kijken. Dus ik heb een vrouw sribi naar links. Ik is van meester. Dan een sribi daar bij moro. Een vrouw moet gaan naar rechts. Daar ook is van boy. Heer jari moet sribi naar rechts. Daar ook is van boy.
1: Maar Luku, hoe denk je nou kan de... Je hebt ervaring met een idee voor je mama?
0: Ja. Ik gebeur zo met je mama. Alles maar dat je het met je zo, hij doet zo. Hij kiest werkelijk een meisje, een boy. Rechts, links. Dat deed ik ook naar dat reis. Je hebt ook een soort tje kiest. Maar ik moest kennen voor ze. Maar die zijn mijn ideeën, mijn leren, mijn tijden. Zo moest doen. Die waren niet van boy rechts. Die waren van meisje links. Maar hier jaren moest doen. Je nam ook een keer moro. Die waren moro tien. Die ook een keer alle jaren. Waar meisje, waar boy, waar meisje, waar boy.
1: Nu heb ik het begrepen, maar dus... सुनो वालों जैसे कि एक पुराना बात है जो माए ने अपने माँ से सीखे थे और वो बात ऐसे होते कि जो 100 साल पहले के बात है मीरदान होंदतियार सौ इमुदर न्यूसाइन और उन्होंने अपने माँ से सीखे थे और ये बात जो आज रेडियो पे डाल दिया कि किसे और कैसे रहना है और अगर आपको जो आप विश्वास करें तो विश्वास करें ना विश्वास करें तो बस यही सोचो कि माए ने अपना संदेश रख दिया और हमें क्या करना है ये हम पर है सुनो वालों बहुत सा और ये संदेश मुझे अच्छा लगा जो माए ने रखा हम जरूर आपके लिए रेडियो पे रख देते हैं और रेडियो से अब आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता सुनने वालों जैसे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो अनेकों देशों में और सुना जा सकता है हमारे साथ जुड़े हुए और श्रीमती दुलम जी मारी दुलम जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे कुछ और प्रश्न रखता हूँ कि माए फोसी देयू रोको दायु चारी यंगो ना पेयु पेयु प्राणी अलेसी
0: तेमी प्राणी अलेसी अदा पे भी चारी यंग निना बना ब्लाद तेमी बन्यांग नंगा ग्रुंतु नंगा बितावीरी नंगा ग्रुंतु नंगा वेतालेसी मिक बन्यांग Temi banyak mino feno anu traba trago dringi. Mi dringi kuon sampu wa trape mi prane alisi tapi mi wai. Da mi dringi na ngami anu so.
1: सुनने वालों देखो गरीबताई का समय पे किस प्रकार से पानी और प्रयोग किया जाता था पर दोस्तों ये है और ज्योति का प्रकाश ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम है इसमें हम सब माए जी जो हम सब के पुराने बातें सुना रहे हैं पर माए युबे अभी वाटर ले देना ओसो
0: नोवा वाटर ले दे नो दे फोसी फोसी वाटर ले दे नो दे सिर्फ सिर्फ ही कौन शैम्पू वाटरा गुत्रो वाटरा दापे को पूरे फुवासी क्रोसी बोरिंग दु अलासानी ट्राफासी नो दे
1: मा इनो सिकी दंग
0: Mino sabi erem emisike mino siki mami sataki na kutru atra mi kebrekeng mi waskrosi nangeng mi borinya nangeng mi dringi lekete fosi ti no bende isapang dri karu mi losing mi trekini na ina faya watra dat mi dringi sondra sukru
1: dri karu mae sana dati dri karu
0: You losing near fire, make a broom. They put na fire water. They drink it, take a bad rapier.
1: Karuna asansa etaki mice.
0: Mice, yeah, mice, dray mice story, you losing. They put na fire water. Na take that big bar.
1: Da soye mekite.
0: Soye mekite, yeah. Na that we drink.
1: Maar mij lijkt van je taki, je tek swampu watra fu bori, je tek swampu watra fu wasi krosi, maar in swampu ook tu moro moro sani de to?
0: Moro moro sani de ma, is heb taki, zo te meki, meki wan peti to. A peti dati, a watra ineng to. Ma, tento do di ineng tu, muka breka watra fu dringi, fu wasi krosi fu nyang trafasi no de watlete no de
1: ma e asansa de kari bhachol ade ineng tu
0: no that no de that no de fate ka de jok poso
1: no taki ching krokodil de taki meki is
0: ya krokodil ya tene ne watra tu so mi tene ti temi teki ember no man guna teki water na inaku na gutro krokodile jopo meskri ki mitro air ember milongo na oso mama krokodile dape mi biari mi kre itu
1: purani baatein hai sunne walon jisme hum sab aur sun rahe hai jo shrimati mari और जा करके हम सब के साथ और बांट रहे हैं इन बातों को सुन करके हमें भी अच्छा लगता है और पुराने बातें में कितना मजा है सुनने में और शायद मजा इस कारण हो रहा है क्योंकि हमें इसके अनुभव नहीं है कि किस प्रकार से होता था जैसे कि अभी आपने सुने कि रात में जल भरने के लिए और बाल्टी लेकर के और पेटी पे गए और पेटी से और मगरमच्छ जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं छलांग लगाया और डर के मारा और जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं माए तो शायद वो जब मगरमच्छ अपना वाला दिखा देता तो शायद माए नहीं होते माए इफ क्रोकोडाइल बे विन्यू आदे दत्ती दे यू नो स्टोन जासो
0: नहीं इस अवसर temi pakwe ki foru to ba bigi peti dape watra lai nanga dagu blat krokodil de drape te a foru waka waka so krokodil de nyama foru goni na watra a watra temi kabure kwas krosi bori nyang alasan dringi iya trafasi no de na usan patra de kabure iya
1: जिस समय अभी वाटर लाइडिंग नहीं था जिस समय अभी जो एसवीएम साइट नहीं बना हुआ होगा सूरीनाम में और जा कर के उस समय की बात है ये जो हमारे साथ और आज ये संदेश को रख रहे हैं माए मार बोइत वात्रा युबे अभी
0: स्ट्रोम नो दे De tori dat no de pinating. No one strom no de. No one water let no de. Next, kuon blood. Teneti tapu, adungru hilemal. Inosipe waka.
1: Watra no de nanga strom no de mae. Mar wansa musude. Maskita musude to.
0: Maskita de lai dat misabi maskita no taki. Te waka neti inosipe waka. Nina dungru sokani tap wansani inosabi. Yes,
1: उस समय का बात जो बहुत साल पहले की बात है सूरीनाम में ऐसा होता था भारत में भी ऐसा होता था और जब गरीबताई था जब एनर्जी यानी कि फ्लेक्टिंग जो नहीं होते थे घर में वाटर लाइडिंग जो नहीं होते थे और इस प्रकार से जीना पड़ रहा था पर माए युगोना स्कोरो
0: मीना गाश करो सिर्फ स्कोरो ना बेंदे Skoro no de stref stref a bisten da tipe mi posi be de pcinegre. Ano de stref stref a de ma skrifi nanga foru nanga hen. Tati a skrifi, mami mano pot mina skoro.
1: जिस समय और पंखे के और फोरू कहते हैं और पंखे से और लिखा जाता था और उस समय के बात है और उस समय पे और माँ जो अपने बेटी को स्कूल नहीं भेजे तो दोस्तों, इन बातों को सुनकर हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माए मी कांदे दिसी फ्राख दे ओफर बहुदख मार एफ वात्रा नो बेंदे स्ट्रोम नो बेंदे दफा
0: ने समसा स्ट्रोम नो दे तो मा वात्रा दे मा फाया दे लेती नंग शुआरफु मैं कि फाया ने उडू फाया गोबोरी दादुआंग या दातीवांग
1: तो उसे भी और उसमें भी क्लांबू में सोना पड़ता था जो कि माए मी फ्राख बेंदे फोसी फादे में की फर लिखतिंग नंगा कोकोलांपू
0: कोलांपू नंगा सानी क्वार्सिनोली